नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को

0: और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

0: नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करे।

0: देगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है, सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
5: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
4: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat.

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Musically yours, naam namaste sat sri akal. Good morning, happy happy Friday. Shukr hai, aaj shukrawar hai. Aur aap sun rahe hain Akashvani Mumbai ke Indra ka FM Rainbow Channel Show, jo shuru hone ja raha hai, uska naam hai Mass Mumbai. Aur aap को जो मैं पहला सॉन्ग सभी को डेडिकेट करने जा रही हूँ मेरी तरफ से आप सभी के लिए,

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

गए होंगे आप, तभी तो मुझे इतने सारे पहले से ही गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आने शुरू हो गए. सो यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. वेल, शो शुरू हो चुका है हेलो मुंबई, और आप है मेरे यानी आरजे कंचन के साथ. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे टुडे. और जब मॉर्निंग की बात करते हैं ना, तो वैसे तो किसी को भी सजेशन देना कि यार जल्दी उठो, ये वो करो, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है हमारे डिसिप्लिन पे ही होती है कि आप जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी अपने सारे जो भी आपके दिन के कार्य है वो पूरे कर लेंगे. अच्छा, अक्सर पिछले दिनों से ऐसा देखा जा रहा था कि सुबह करीबन 10 बजे तक थोड़ी सी, या फिर अराउंड 8:39 तक आपको ऐसा लगता था कि सूरज जो है वो छुपे हुए हैं और थोड़ा एक ठंड का एहसास रहता था. कट टू अगर आप देखें तो ये समय में बदलाव आ गया है और 7 बजे भी ऐसा लगता है कि सूरज बिल्कुल निकल गया है और बिल्कुल कहते हैं ना, गर्मी का एहसास सुबह से ही हो जाता है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर में अपने सिटीजन्स, जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, और बच्चों का खास ध्यान रखें. वैसे तो ये ज्ञान की बात हम आपको हर बार देते हैं, लेकिन इसे एक प्यारा सा टिप समझिए, एक छोटा सा सजेशन समझिए, और जहाँ तक हो सके जस्ट बी अलर्ट और एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए. वेल, आप सभी के लिए अगले दुकान है मेरे यानी आज कंचन की तरफ से. स्टे ट्यून्ड.

आप सभी को बता दें कि ठीक 9 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम दागिना सोन्याचा असो वा हरियाणचा दागिना म्हणजे पो, बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी हैप्पी फ्राइडे, शुक्र है आज शुक्रवार है, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ठीक 9 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: हैदराबाद की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल में, यानी आज एक अंचन के साथ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थॉट मेरे दिमाग में आया है, सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर लें कि आजकल लोग ऑनलाइन ज़्यादा होते हैं या फिर खुश होते हैं। यानी डिफरेंस देखिए कि अगर ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप ऑनलाइन हैं 24 आवर्स और अगर आप देख रहे हैं कि दूसरे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जान पहचान के जितने भी लोग हैं, वो जब हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, तो कई बार ये एक डिबेट का मुद्दा बन जाता है कि क्या वो खुश हैं या फिर एक सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए अपनी अपडेट हर थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहते हैं। लेकिन सच पूछिए तो लाइफ में रियल अपडेट हो रही है क्या, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, पहले क्या होता था, लोग घर जाकर किसी की भी घंटी घर की घंटी बजा देते थे, लेकिन आप मैसेज भेजते, मतलब पहले क्या होता था कि खुल के हम चले आते थे कहीं, इतना पूछना नहीं पड़ता था, इतनी तकल्लुफ यानी कि इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती थी और हम बस जाके पहुँच जाते थे किसी के भी घर। लेकिन अब परमिशन लेना पड़ता है कि आप घर पर हैं, और अगर सामने वाले को लगेगा कि हाँ मैं हूँ या मेरा दिल कर रहा है मिलने का, तो वो जवाब पॉजिटिवली मिलेगा आपको। अच्छा, पहले बर्थडे पर लोग सरप्राइज़ दे देते थे, अब बस स्टोरी रीपोस्ट कर देते हैं और ब्रो एंड डूड ऐसे करके अपने सारे हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस भेजते हैं। यानी हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो गई है। चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी रियल लाइफ में जो आपके रियल दोस्त होते हैं, वो बिना जो कोई भी फिल्टर हो, उसमें आपको क्या लगता है कि आपने कितना वक्त उनके साथ गुजारा है। कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। अगला गाना आप सभी के लिए।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: कर रहे थे हम ऑनलाइन हैप्पीनेस एंड ऑफ कोर्स ऑफलाइन की. तो कहते हैं ना कि वो जो एक हर चीज़ को वर्चुअल कर दिया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें वर्चुअल होती जा रही हैं, एआई का ज़माना आ गया है, लेकिन वो ह्यूमन टच उसकी बात ही निराली होती है और उसका बहुत ज़रूरी है होना हमारी लाइफ में. जहाँ हम एक समय होता था फ़ोन उठाओ कॉल करो और अगर कोई कोई बात होती थी तो दिल की फटाक से हम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते थे. हाँ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हम बाद में शेयर करते थे क्योंकि दोस्त होते ही कुछ ऐसे हैं. सच कहूँ तो ज़िंदगी में लाइक्स जो सोशल मीडिया पर लाइक्स होते हैं वो कम चलेंगे, लेकिन अपने लोगों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए. तो जहाँ तक हो सके ऑफलाइन की दुनिया में कोशिश कीजिए अपने दोस्तों से मिलने की, खास करके रिलेटिव्स की, क्योंकि अचानक से आपको पता चलेगा कि किसी की तबीयत ख़राब है या किसी के घर में कुछ गुड न्यूज़ है. तो ये सब बातें जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऑफलाइन जो अपनी जो रिलेशंस हैं उनको बरकरार रखें. इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन आपसे छूट जाए कहीं, क्योंकि वो तो खैर हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. फिलहाल आप सभी के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया. आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं कुछ ज़रूरी संदेश.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।
5: हर घर

कुछ इंटरेस्टिंग ख्याल जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि लाइफ में नेटवर्क वीक हो सकता है लेकिन रिलेशनशिप का कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। और वैसे अक्सर देखा गया है कि लोग आजकल टाइपिंग ज़्यादा करते हैं और फीलिंग्स कम एक्सप्रेस करते हैं, और मेरा भी ये पर्सनल मानना है कि जब भी हम टाइप करके कोई मैसेज को भेजते हैं, यकीन मानिए कई बार ऐसा होता है कि जो हम कहना चाह रहे होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, इनफैक्ट दूसरा ही कुछ उसका मीनिंग निकाल दिया जाता है, जिससे कि कई बार बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। चलिए, सिंगल हो या कमिटेड, लेट नाइट ओवर थिंकिंग सबको होती है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं कि आप ही को हो रही है, हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में लेट नाइट ओवर थिंकिंग ज़रूर होता है। और यकीन मानिए जो लोग आई एम फाइन बोलते हैं ना, उनकी प्लेलिस्ट में सबसे ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल पर जब हम रुकते हैं तो ज़िंदगी भी एक खूबसूरत सा लेसन दे जाती है कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा पॉज कर लो, सब कुछ ग्रीन, यानी कि जब ग्रीन लाइट होती है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हमारी ज़िंदगी भी एक लाइव रेडियो की तरह है, बिल्कुल जैसे कि जहां हम कोई टेक्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन कई बार अगर कुछ यू नो इफ्स एंड बट्स आ जाएं तो आप उस पर सॉरी भी बोल सकते हैं या एक्सक्यूज़ मी भी बोल सकते हैं। कभी कभी जो हमारी साइलेंस होती है वो भी बहुत कुछ बोल देती है, और कई बार हमारे बहुत सारे शब्द बोलने पर भी वो शब्द कम पड़ जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, और जितने भी लिसनर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े, आपका दिल से शुक्रिया। आपके मैसेजेस पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर ये गाने सुनकर आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा, विच ऑफकोर्स आप अपने मैसेजेस के जरिए मुझे बता ही रहे हैं। सो डू यू नो दैट वी रियली रियली अप्रिशिएट व्हेन यू मैसेज अस। सो डू यू नो, अरे डू यू नो क्या है यार, डू यू नो

0: WhatsApp banking,
1: eKYC,
0: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
0: Cosmos RuPay और Visa Debit Card,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos Bank में जरूर होना चाहिए.
0: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life.
2: अच्छा, अगर आप एक चैलेंज अगर मैं आपको दूं तो क्या आप कर सकेंगे? वैसे इतना मुश्किल चैलेंज है नहीं. फ़ोन को साइड में रखिए और 10 मिनट खुद से बात करिए, देखिए कितना मज़ा आएगा. वैसे लोग सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप शायद फ़ोन पर ही बात कर रहे होंगे, शायद अपने एयरपॉड्स या ईयरफोन्स लगाए होंगे, लेकिन खुद से बात कीजिए, कोशिश कीजिएगा ज़रूर. दिल टूटने के बाद इंसान शायर नहीं बनता, लेकिन हाँ, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो डेंजरस हो जाती है. और अगर आपको लाइफ बोर लग रही हो तो थोड़ी सी चाय शाय बनाओ, म्यूज़िक लगाओ यानी कि एफएम रेनबो सुनो और थोड़ा सा फिल्मी हो जाओ. कहते हैं कि हर मैसेज के पीछे कहानी होती है, इसलिए हर मैसेज के पीछे का जो इमोशन है, हिडन इमोशन, वो हम बहुत अच्छे से समझते हैं. सो थैंक यू सो मच. आप बहुत ही प्यार से अपने अपने मैसेजेस इजहार करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और जब अगर कभी आपको कभी स्ट्रेस आ भी जाए ज़िंदगी में, यकीन मानिए उस स्ट्रेस को कहिए बड़ा जरा सा साइड हो जाओ, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, क्योंकि मुंबई लोकल्स से हमारी ऑलरेडी ये मुंबई लोकल्स के जो अंदर की जो भीड़ होती है उससे हमारी फाइट ऑलरेडी चल रही होती है. सो स्ट्रेस को कहिए दूर. और याद रखिए, लाइफ परफेक्ट हमेशा नहीं होती, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के परफेक्ट मोमेंट्स, जैसे कि इस वक्त हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई केंद्र के एफएम रेनबो चैनल पर. मेरा नाम है आरजे कंचन.

आप सभी को बता दें कि ठीक 10 बजे होंगे हिंदी में मुख्य समाचार, उसके बाद होगा कार्यक्रम नमस्ते भारत। भारत कहीं जाइएगा नहीं, आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, और कुछ खास लेकर आएंगे आपके साथ। वो क्या खास बात है उसके लिए करिएगा थोड़ा सा इंतजार। वैसे हम हेलो मुंबई को करेंगे टाटा बाय बाय, लेकिन यूं ही नहीं, क्योंकि जाते आते इसमें भी आपको लास्ट में सुनाते जाते हैं कुछ और खूबसूरत गाने, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई केंद्र के एफएम रेनबो चैनल पर। स्टे ट्यून्ड।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz.
1: जी हाँ, पेश है आकाशवाणी पर अभी तक के मुख्य समाचार। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोलाइड्स ने आज मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और पारंपरिक घंटी बजाने की रस्म में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साइप्रस भारत, यूरोप और पूर्वी भूमध्य सागर के बड़े हिस्से तथा मध्य पूर्व के बीच एक स्वाभाविक प्रवेश द्वार है। यह राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के साथ साथ महत्वाकांक्षा, नवाचार और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का भी संगम है। समाचार में आगे, पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की कल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर करीब से कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। समाचार में आगे, भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान AIA ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमेरिका में भारत के राजदूत विनय कात्रा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। अब खेल समाचार। IPL में क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 13 ओवर में 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हैदराबाद में शाम 7:30 बजे होगा। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 107.1 MHz आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल है, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर, और हमारे साथ हैं
1: RJ कंचन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज फैक्टर इज अवेटिंग, तो सरप्राइज ये था कि मेरे दोस्त और मेरे को होस्ट RJ रवि स्टूडियोज में आ चुके हैं और आप सभी के साथ रूबरू हो चुके हैं। यस
0: बिल्कुल, इस कार्यक्रम में हम गांव की बात करते हैं, ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, तो आज हम ऐसी ही कुछ बातें करने वाले हैं। फिलहाल एक बेहद प्यारा नगमा आप तक पहुँच रहा है फिल्म दिल से।
1: क्या बात है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जी आप सुन रहे हैं 108.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर और मेरे साथ है
1: कंचन उर्फ कांची।
0: जी हाँ, और हम कार्यक्रम सुन रहे हैं नमस्ते भारत। और नमस्ते भारत के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं गोरी गांव तेरा
1: बड़ा प्यारा।
0: जी हाँ, देखिए महात्मा गांधी के समय में जब महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये कथन आज भी उतना ही सत्य है कंचन।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम गांव की बात करते हैं ना, एक प्यारा सा फील आ जाता है, वो खुले आसमान और वो खुले खेत और वहाँ का खाना और वहाँ का माहौल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गांव कहा भी जाता है कि अगर हम शहरों और गांव में अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की बात करें तो किस तरह हम समझे कि ये गाँव है, तो इसकी परिभाषा एक दी गई है कि जहाँ की अधिकतर आबादी कृषि या खेत खलिहानों पर निर्भर हो, कृषि पर निर्भर हो, तो उसे हम गाँव कह सकते हैं, गाँव कह सकते हैं। जब जब यहाँ पे कृषि होगी, खेत खलियान होंगे, वहां पे पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे अपने साथ वातावरण में एक स्वच्छता तो लाती ही है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो इस मोड़ पर प्ले करते हैं एक फिल्म रंगीला से ये गाना। बने रहिए आप एफएम रेनबो के साथ। मैं हूं आपके साथ आरजे रविशंकर और मेरे साथ है कंचन।
1: थैंक यू।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ। आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर और मेरे साथ है
1: आरजे कंचन और बात हो रही है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, यानी कि हमारे देश में गांव की हम बातें कर रहे थे। सो रवि, ये जो गाना था ये भी बहुत खूबसूरत था।
0: बिल्कुल
1: यस, आप क्या कह रहे थे?
0: यही कहना चाहता हूँ कि गाँव का सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है उसका प्राकृतिक वातावरण होता है। चारों तरफ खेत खलिहान, पेड़ पौधे, नदी तालाब और शुद्ध हवा। शहरों की तरह कंक्रीट के जंगल और उगलती फैक्ट्रियां नहीं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत होती है कि गांव में जो वातावरण का प्रभाव होता है वो हमारे दिल तक भी उतनी मासूमियत से ही अभी तक बरकरार है।
1: और जब भी हम मासूमियत की बात करते हैं ना रवि, अक्सर ये देखा जाता है कि हमें तो बचपन याद आता है।
0: बिल्कुल।
1: जब हमारे पेरेंट्स हमको गर्मी की छुट्टियों में गांव लेकर जाते थे
0: जी।
1: वो ट्रेन का सफर और वो हम जब गांव पहुंचते थे, आपने कहा नदी और खेत खलिहान, यकीन मानिए जब वो ट्रेन की जर्नी होती है अगल बगल आपको नदी दिखता है और उसके बाद जब आप पहुंचते हैं तो वहां से भी घर तक जाने के लिए आपको उन खेत खलिहानों के बीच में से चलकर भी जाना होता है। तो उसकी यादें आपने एकदम ताजा कर दी मेरी इस वक्त। और मुझे याद आता है कि वहां का खाना या पीना या दूध या जो भी दही आप कहें कि उसका स्वाद ही निराला होता है,
0: ज्यादा होता है।
1: बिल्कुल,
0: वहाँ पर
1: बिल्कुल, और वो मिलावट भी कम होता है। लेकिन अगर आजकल के गांव की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत तरक्की कर ली
0: जी,
1: है।
0: गांव का भी शहरीकरण एक तरह से हो रहा है,
1: मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी बात वही है कि जहाँ पे कृषि होगी, खेत खलियान होंगे, वहाँ की हवा शुद्ध तो हो ही जाएगी। बहरहाल, इस मोड़ पर एक गाना
1: जो हम गलियां छोड़कर यहाँ शहरों में बस गए हैं, तो आप सभी के लिए हमारी तरफ से ये खूबसूरत गाना,
0: ये गाना सुनिए और अपने गांव को याद कीजिए इस गीत के माध्यम से।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: इन वादियों और गानों में। बहरहाल आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त RJ रवि शंकर।
1: ऐसे रवि, गाने आपने बहुत खूबसूरत चलाए और वो उन वक्त के गाने हम सुन रहे थे जो हम कहीं पीछे थोड़ा सा छोड़ आए थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम गांव के या हसीन गलियों में और गानों के वादियों में जाते हैं तो वो चीजें याद आ ही जाती हैं। सबसे हम गांव की बात कर रहे थे नमस्ते भारत की तरह, तो गाँव की सबसे बड़ी बात जो होती है सामुदायिकता होती है। यहाँ पर हर चीज लोग आपस में मिल बांट कर मनाते हैं, चाहे सुख हो दुख हो त्योहार हो, हर चीज एक साथ कहिए तो लोग हर चीज में आप का ख्याल रखते हैं। बहरहाल इस मोड़ पर आप क्या कहना चाहती हैं? 10:51 हो रहे हैं, बस कुछ ही चंद गानों की यहाँ गुंजाइश रह गई है, तो कंचन आप क्या कहना चाहेंगे गांव?
1: बिल्कुल, आपने कहा ये कम्युनिटी नेटवर्क जो वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग होता है। यकीन मानिए मुझे अपना वक्त याद आता है जब हम बचपन में जाते थे तो किसी के घर में अगर शादी होती थी या कोई एक अच्छा सा यू नो कार्यक्रम होता था तो वो क्या करते थे कि विजय हो करके वो बुलाते थे सबको, अगर याद हो, और सारे गाँव के लोग एक साथ दावत खाने चले जाते थे और वो पत्ते के ऊपर, वो जो पत्ते का जो पेट होता था उसके ऊपर खाते थे जमीन पर बैठ कर, या फिर वो पिढ़ई, अगर आपको याद होगी रवि, वो लकड़ी की एक पिढ़ई होती थी जिसके ऊपर वो बैठते थे उसके बाद खाते थे। अच्छा, बचपन की एक और बात अगर मैं बात करूं गांव की, स्पेशली अगर आप किसी के भी घर चले जाएं वो आपको चाय नाश्ता तो कराते ही थे। वो स्टील के कप्स आपको याद होंगे जो दिखने में बहुत बड़े होते थे लेकिन अंदर से उसमें थोड़ा सा ही आता था, लेकिन उस वो जैसे हम पीते थे हमारी जबान में चटक जाता था। सो ये बचपन की यादें गाँव से जुड़ी हुई मुझे इस वक्त याद आ रही है। और एक और,
0: बिल्कुल
1: आप कहेंगे कि इनकी कहानियां ही नहीं खत्म हो रही, मुझे याद है जब हम यू नो दिल्ली शहर से जाते थे, हम शहर से उठकर गाँव जाते थे, आपके पेरेंट्स तो जनरेशन वाइज यू नो शहरों में ही बस गए हैं, पर हम शायद कुछ फॉर्चुनेट एक वो टाइम के लोग रहे होंगे जो गांव अभी भी जाते हैं और याद करते हैं। किसी के भी घर चले जाइए, कुछ नहीं तो गरम गरम यू नो वो चूल्हे की रोटी के अंदर सरसों का तेल, राई का तेल, और उसमें नमक डाल के रोल करके, और वो भी इतना टेस्टी लगता था जो हम शायद शहर में नहीं खा पाते,
0: और स्वाद के साथ अपनापन खास भर भर के भरा होता है उसपे।
1: जी
0: बिल्कुल, अब यहाँ पर हमें एक गाने की लगभग गुंजाइश बच गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो और गाने के साथ हम जैसे कि हमेशा कहते हैं रवि कि सुनते रहेगा हमारा FM रेनबो चैनल 24/7, तो अब नहीं कहेंगे लेकिन हाँ रात के 11 बजे तक जरूर सुन सकते हैं। और उसके अलावा हमारी जो फ्रेंड है RJ वैशाली अपनी प्यारी सी मुस्कान लेकर स्टूडियोज में आ चुकी है। ठीक 11 बजे लेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, यस उसके बाद करते हैं होगा ब्रेक फ्री
0: और हम लोग फिर से मिलेंगे किसी न किसी मोड़ पर। बने रहे आकाशवाणी FM रेनबो के साथ, ये नगमा आप तक।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 11:10 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई भी आ चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की सीट सुमित्रा अजीत पवार और तमिलनाडु की सीट से सीवी षणमुगम के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। उपचुनाव के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और कराया मतगणना भी उसी दिन शाम 5 बजे होगी। मुख्य समाचारों में आगे, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित कराने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले की विस्तृत जांच करेगा। इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। मुख्य समाचारों के अंत में, ईरान के नए बने फारसी खाड़ी जल डमरू मध्य प्राधिकरण ने एक नक्शा जारी किया। इससे हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर गतिरोध कल और गहरा गया है। इस नक्शे में उसने ईरानी तटों से लेकर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के फुजैरा और अल कुवैन बंदरगाहों तक फैले जलमार्ग के एक बड़े हिस्से पर अपना नियामक नियंत्रण होने का दावा किया। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं।

दोस्तों, जब ऐसा लगे कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, देखो उसका कितना अच्छे से हो रहा है, या फिर ऐसा लगे कि वर्जिश हो या चाहे कोई और काम, तब हार मानने के बजाय भाई जरूरी है कुछ करना। हाँ, आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री 107.1 FM रेनबो पर। मैं हूँ वैशाली और आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। और साथ ही साथ आगे आपसे ये कहूंगी कि कैसे करें भाई कोई भी काम, यानी कुछ करना तो जरूरी है, तो ये सारी चीजें जो कठिन लगती है, मेहनत लगता है, जिसमें प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस से पहले ही घबराहट होने लगती है, उन चीजों को लेकर मैं तो आप सभी से कहूंगी कि फिकर नॉट। इन सारे जज्बातों से ब्रेक फ्री कैसे करना है, उस पर आज बातें करेंगे हम 107.1 FM रेनबो पर। म्यूजिकली योर्स और लाइफ में भाई चलते जाना है, अकेले हो, सबका साथ हो चाहे ना हो, क्योंकि भाई जीवन जिंदगी चलते रहने का नाम है ना।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और ब्रेक फ्री चल रहा है। ब्रेक फ्री में कई सारी बातें आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और सबसे पहले तो आप सभी को मैंने बताया कि भाई आज विषय क्या होगा और विषय वही है जो भाई सदियों पुराना है और आगे चलकर भी रहेगा, यानी कि प्रेशर या घबराहट। इन सब के चलते जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ऐसा मैंने कहा था, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो दोस्तों कुछ आदतें छोड़े नहीं छूटती है ना, आप भी इसे जूझ रहे होंगे, इसलिए जरूरी है उन्हें थोड़ा थोड़ा करके कम करने की, यानी कि इसमें जो ध्यान देने की बात है वो है थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा अगर कम करेंगे आप तो आदत बदल जाएगी धीरे धीरे। अब देखिए, अगर हम अपने आप को प्रेशराइज ना करें तो बिल्कुल ही आसान बन जाता है। देखो अक्सर जो चीजें गलत होती हैं उनको तो हम आराम से कर ही लेते हैं ना, एक बार, सिर्फ एक बार हम अपने आप से यही कहते हैं ना कि ये बस एक बार करूंगा फिर नहीं करूंगा। तो जब गलत चीजें आप एक बार करने से नहीं घबराते तो फिर यही लॉजिक तो अच्छी चीजों पर भी लागू होता है ना। अच्छी चीजें भी एक बार कर लो भाई, एक बार, फिर बाद में सोच लेना करना है कि नहीं। तो हमारा दिमाग यही कहता है हमारे मन से कि जब कोई प्रेशर ही नहीं तो डर कैसा। और एक ही बार करने में हर्ज क्या है। तो भाई एक पुशअप की बात करें, एक मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर एक मिनट का ध्यान चाहे हो या फिर कोई भी और चीज, एक बार तो कोई भी चीज की ही जा सकती है। तो जैसे हम किसी गलत चीज के लिए चोरी छुपे कर देना, बस बस एक बार, आखिरी बार, आखिरी बार, उसी तरह भाई अच्छी चीजों को करो, एक बार करके देख लो, फिर आपको आदत हो जाएगी। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: गराज के आगे गराज, गराज के ये मकैनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री 107.1 एफएम रेनबो पर। मैं हूं वैशाली और आप सभी साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। दोस्तों, बात हो रही थी उन चीजों की जो हम नहीं कर पाते हैं भाई। अब वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज, मैंने जैसे आपसे कुछ वक्त पहले कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा करके करो। जैसे हम छुप छुप आकर गलत चीजें करते हैं, हमें पता होता है नहीं करनी है, फिर भी हम सोचते हैं अरे एक बार आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह वगैरह नहीं खाना, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा। तो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके अच्छी आदतें भी बना लीजिए ना, उसमें क्या हर्ज है। दोस्तों, अब आगे आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ, वो ऐसी कि देखिए, कई यंगस्टर्स उम्र के ऐसे पड़ाव पर होते हैं जब उन्हें करियर चूज करना होता है, आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करना होता है, और कभी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अब ऐसे में अगर वो चुनाव ना कर पा रहे हों तो इसका भी एक आसान तरीका है। चढ़ा, और वो क्या चीज है जिसके लिए आप रोजाना उठकर काम पे जाने के लिए, कामकाज करने के लिए उत्साहित होंगे। ये सोचिए, और ऐसा काम जो पर्पस ड्रिवन हो, जिसके पीछे कोई उद्देश्य हो, जब किसी चीज को करने का मीनिंग मिल जाए ना, है ना, तब जो है अधिक ऊर्जा और अनुशासन से हम उस काम को करते हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल सहमत होंगे जो अपने दिल का काम करते हैं, यानी कि आपको रोज सुबह जो एक मोटिवेटेड फील होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा काम जो है वो मुझे करने जाना है। आपको कुछ एक्साइटमेंट लगता है, आपको लगता है अरे भाई आज ये होगा, कल वो होगा, परसों कुछ और होगा, और उसकी प्लानिंग, सारी तैयारियां, उसके पीछे की भाग दौड़, जब ये चीजें आपको एक्साइट करती है और आपको पता है कि आगे चलकर मे बी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप उस मकाम के कहीं पास होंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं, तब जो है ये सारी चीजें आपके लिए मीनिंगफुल बन जाएगी। तो अगर आप हमारे कोई यंगस्टर लिसनर्स हैं, और अगर आप वैसे यंगस्टर नहीं लेकिन दिल से यंग है और कुछ बहुत ही जबरदस्त करना चाहते हैं, तो ये एक आइडिया बहुत कसब का है। जो चीज आपको सुबह उठने के लिए मजबूर नहीं करे, आपको एक्साइट करे, वो चीज करना, आहा, तो फिर तो आप रोज काम पर जाएंगे दौड़ते भागते खुशी से, और बिल्कुल नहीं पलटेंगे। हालांकि हमारा यहाँ हीरो कह रहा है पलट मेरी जान।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है और बातें हो रही हैं वही उन कामों की जो हम करने से या तो डरते हैं, घबराते हैं, हम प्रेशर महसूस करते हैं या ऐसा लगता है कि भाई हम इसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके कई सारे आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए कि भाई एक बार कर लो और फिर देखो धीरे धीरे आदत किस कदर बदल जाएगी। यंगस्टर्स की भी बात कर रहे थे कि जब करियर चूज करना हो, बाकी चीजें करनी हो और ऐसा लगे कि नहीं हो पा रहा है, बस सुबह में उठ ही नहीं पा रहे, वहां तक जा ही नहीं पा रहे, तब करना क्या है। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले आपको करियर या कोई काम ही ऐसा चुनना है जो आपको एक बड़ी चीज के लिए मोटिवेट करे। अब देखिए दोस्तों, कई लोगों की कंप्लेन होती है कि चाहे जितना समय लगा दे उनके काम समय पर खत्म ही नहीं होते। दोस्तों संस्कार मतलब एक तरह है आदत, है ना। तो जब आप अपने माइंड को सही संस्कार देते हैं वो किसी भी काम को अच्छे से निभा पाता है। पढ़ाई की बात हो, चाहे ऑफिस के काम की या अन्य कोई भी काम क्यों ना हो, जब आप एक पर प्लान्ड रिचुअल के हिसाब से किसी रोजमर्रा के काम को करते हैं तब आपका काम बिल्कुल सही समय पर पूरा होता है और वो भी हर रोज। हाँ बिल्कुल, करके देखिए, आजमा के देखिए, फिर बिल्कुल मुझे बताइएगा कि आपका काम समय पर ठीक ठीक हुआ कि नहीं। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर और बहुत जल्द एक आखिरी गाने के बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में मुख्य समाचार ठीक 12 बजे। दोस्तों जाते जाते बस यही कहूंगी कि हम में से कई लोगों के लिए कुछ भी नियंत्रण में कर पाना मुश्किल होता है ना। अरे भाई कितना, ये हम हमेशा बताते हैं और पूछते भी है कि भाई कितना किलो टमाटर, कितनी

जीनी कितना समय, पर हम कुछ ऐसी चीजें जैसे खाना हो गया या नींद हो गई उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हम सभी को पता है कि इसके लिए जरूरी है अनुशासन, पर इस अनुशासन नामक चिड़िया को पकड़े कैसे? तो बस उसे अनुशासन कहे बिना काम करो, ये एक अच्छा आइडिया है। जब भी खाना खा रहे हो तब जैसे ही लगे कि पेट 80% फुल है तो भाई रुक जाओ। इंटरनेट पर समय बिताते वक्त रैंडम स्क्रोलिंग करने के बजाय अपने पसंद के विषय पर एक पॉडकास्ट या 10-1 रील्स देख लो। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही तय कर लो कि किस आंकड़े पर जाकर रुकना है। अगर 8 घंटे की नींद चाहिए तो सुबह 6 बजे उठना है, अगर तो रात को 10 बजे सो ही जाना है, ये तय कर लो और भाई देख लो कि कैसे जिंदगी आपकी बदल जाती है। तो भाई फोकस जो है ना रात को 10 बजे सोने पर करना है, ना कि 6 बजे उठने पर। 10 बजे सोगे तो 6 बजे अपने आप आंख खुल जाएगी। इतना आसान होता है अनुशासन अगर हम उस शब्द के बारे में ज्यादा सोचकर भारीपन महसूस ना करें और उसके बजाय सिंप्लीफाई कर दे और बस किसी आंकड़े पर जाकर रुके। और यहां पर मैं अपनी बात को भी रोकने वाली हूं एक आखिरी गाने के लिए।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 12:28 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में साइप्रस के अध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आज दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुंबई की मेट्रो लाइन 3 एक्वा मेट्रो लाइन पर आज सुबह भीड़ भाड़ वाले

इस समय में एक तकनीकी खराबी के कारण सेवाएं बाधित हो गईं, जिससे यात्री असमंजस और भारी भीड़ के बीच फंस गए। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा कि एक तकनीकी खराबी के कारण डाउनलाइन और अपलाइन दोनों मार्गों पर ट्रेन सेवाओं में देरी हुई थी। मुख्य समाचारों में आगे, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में तेंदू के पत्ते इकट्ठा कर रही चार महिलाओं को एक बाघ ने मार डाला। आज सुबह ये दुर्घटना हुई। वन अधिकारी ने बताया कि ये घटना सिंदेवाही तहसील के गुंजेवाही गांव के पास हुई, जो जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। मुख्य समाचारों के अंत में, मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स 161 अंक या 0.21% की तेजी के साथ 75,344 और निफ्टी 40 अंक या 0.17% की मजबूती के साथ 23,697 पर था। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, फल, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिठाइयां, केक्स, हाय, इनका नाम सुनते ही दिल के अंदर कहीं एक छोटा सा बच्चा जोरों से उछलने, फुदकने, कूदने, फानने लगता है। सच बताइए, किसी गर्म दोपहर में ठंडी कुल्फी का पहला बाइट या देर रात फ्रिज खोलकर चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा या बर्थडे केक की शक्ल देखकर दिल दीवाना नहीं बन जाता क्या? ये सब सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, ये मूड का फेस्टिवल है। और साइंस भी कहता है कि जब हम अपनी पसंद की चीज खाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे खुशियों वाले हॉर्मोन्स डांस करने लगते हैं। बिल्कुल वैसे जैसा कि आप डांस करते हैं एफएम रेनबो को सुनते सुनते, बैठे बैठे, खड़े खड़े, जहां कहीं भी हो। सोचिए, अगर हर टेस्टी बाइट के साथ दिल में बजने वाली खुशी, दिल में बजने वाली खुशी की घंटी को अगर हम गानों में बदल दें तो कैसा लगेगा? तो कौन से गाने होंगे वो? तो आप समझ ही चुके हैं अब कि आज का ये म्यूजिकल सफर उसी स्वाद, मिठास और खुशी के नाम है जहां हर बाइट के पीछे छुपा है एक गाना। तो ये गाना जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, ये कैसा महसूस होता है वो गाना सुनने के बाद ही इस पर बात करेंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की

0: आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। और मुझे पता है लंच का टाइम हो रहा है, और जो लोग लंच के लिए नहीं जा पा रहे होंगे ना, उनके पेट में बिल्कुल बहुत सारे गजब के चूहे दौड़ रहे होंगे। वो भी क्यों? क्योंकि हम खाने की बातें कर रहे हैं, चॉकलेट्स, केक्स, मिठाइयों की बात कर रहे हैं। और जो गाना मैंने आपको सुनवाया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अरे भाई ये एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल ही पहली चम्मच आइसक्रीम की तरह ही इंसान को इमोशनली एग्जैक्टली वहीं पहुंचा देता है, है ना, मतलब ऊपर। लेकिन स्वर्ग में नहीं भाई, हम उड़ने लगते हैं। आइसक्रीम का एक जो पहला बाइट होता है ना, वो खाते ही जो ठंडक महसूस होती है ना, आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम से लाजवाब और बेस्ट क्या ही हो सकता है। अब चलिए अगले कुछ गाने आपको सुनवा रही हूँ, और मुझे पक्का बताना कि आपको कौन सा गाना सुनकर कौन सी चीज खाने की फीलिंग आई है। ये बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा आज मैं ऊपर, जो है ये आइसक्रीम का एक स्पून खाते ही ना, इन गर्मी के दिनों में जो ठंडक, जो राहत और जो एक अलग सा अच्छा फील करवाती है ना, इसकी कोई, मुझे लगता है कोई कंपैरिजन ही नहीं किसी और चीज़ के साथ, स्पेशली गर्मी में, है ना। और ऐसा ही लगता है जब हम ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीते हैं, छाछ या लस्सी पीते हैं, और कहीं देखो धूप से हम आकर अंदर जब एसी में बैठते हैं और ये चीज़ें पीने लगते हैं, ठंडी ठंडी चीजें, या फिर जो आइस टी होता है वो भी बिल्कुल ऐसा रिफ्रेशिंग फील दिलाता है। लेकिन आइस टी के लिए गाना अलग है, हाँ ये वो गाना नहीं है। तो अब ये दो गाने आप सभी के लिए मैं प्ले करने वाली हूँ। सोचिए वो गाना जो आपको मजबूर कर दे कि यार मैं क्या करूँ, मेरा मन कर रहा है और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा हो जाए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की।

0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।
5: हर घर

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और म्यूजिक कैफे चल रहा है। और भाई आज हमने आपको वो गाने सुनवाए जिन्हें सुनकर कुछ कुछ खाने की चीजों की याद आती है, यानी उस फर्स्ट बाइट की, उस फर्स्ट लुक की याद आती है, यानी कि जब हम बहुत ही सजे हुए सुंदर से केक देखते हैं, हाय तब दिल में कुछ कुछ होता है। हाँ अब मुझे मत कहना कि कुछ कुछ होता है, मैं सुनाने वाली हूँ। हाँ देखिए, मैंने आपको दो गाने सुनवाए और भाई एक गाना जो था तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ, और उससे पहले मैं क्या करूँ तो मैंने आपसे पूछा था कि ये मैं क्या करूँ, और बाद में तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, ये कौन सी चीज पर, खाने की चीज पर होगा ये गाना, यानी कि कौन सी चीज खाने के बाद आपको ये गाने शायद मन में बजे। तो मुझे लगता है आपके दिल का गिटार जो है चॉकलेट्स खा कर इस कदर बजेगा। चॉकलेट्स की क्या ही बात करें भाई, ये सिर्फ मिठाई नहीं है, एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। ब्रेकअप हो जाए, स्ट्रेस हो, या बस बिना वजह मूड ऑफ हो, या बस कुछ मीठा खाने का मन नहीं क्यों ना हो जाए, एक छोटी सी चॉकलेट भी दिल को ये एहसास दिला देती है कि सब ठीक हो जाएगा भाई, ऑल इज वेल। वहां पर भी हम पहुंचेंगे शायद, क्योंकि इतने सारे बढ़िया बढ़िया गाने हैं भाई, इनको खाने से जोड़कर सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, और आप सभी के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई मेरे दिल की गिटार भी बज जाती है जब मैं आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। अब देखिए, चॉकलेट के बारे में ये बात तो है ही बहुत ही गजब की, और इन गानों में भी वही बिल्कुल एक मिठास है जो इस तरह घुल जाती है, हमें घोल देती है उसमें, कि क्या कहूँ मैं। ये चीजें तो हम समझ ही सकते हैं, और खास करके लंच टाइम पर हमें खाने की चीजें ज्यादा समझ में आती है ना। तो ये केयरफ्री मस्ती, ये एनर्जी, और भाई चॉकलेट का स्वाद, ये सभी तो चॉकलेट के हर बाइट में मुफ्त मिल जाती है। और कुछ अभी और बातें खाने की चीजों के बारे में, केक के बारे में हालांकि मैंने बात की, लेकिन भाई केक का तो कुछ मजा ही और है। ये गाने सुनिए और केक वाली फीलिंग जो है दिल में जगाइए। आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

107.1 FM रेनबो पर मैं हूँ वैशाली आप सभी के साथ और चल रहा है हमारा शो म्यूजिक कैफे। बातें खाने पीने की चीजों की जिन्हें भाई खाते ही वो वाले गाने वाली फील आती, या फिर आप ये सोच सकते कि वो गाने सुनकर उस खाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि

एकदम बिल्कुल सिट्रसी, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने खुद प्लेलिस्ट बनाकर कोई मस्त कर देने वाले गाने चला दिए हो, और इसीलिए आपको सारे मस्त और मदहोश कर देने वाले गाने सुनवाए मैंने आज। ये चॉकलेट्स हो गए, ये फल वल की बातें हो गई, और कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं तरोताजा करने वाले, जैसे कि अपना अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, भूल गया। हाँ, बात हो रही थी आइस टी की, आइस टी और नींबू पानी। भाई नींबू पानी कैन नेवर गो रॉन्ग, यानी कभी भी आपको भले ही थकान लगे, आपको ऐसा लगे कि नहीं कुछ हैवी नहीं चाहिए लेकिन फ्रेश फील करना है, तो नींबू पानी भाई कहीं आप गलत नहीं हो सकते। आपको बस नींबू की जरूरत है उसके लिए, शक्कर आप ले ना ले उसमें, आप नमक ले ना ले, लेकिन भाई नींबू निचोड़ कर पानी डालकर इतना भी आप पी लेंगे ना, आप सेट है भाई। तो ये सारी चीजें तो हुई, और आगे और हमारी देसी मिठाइयां, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, वैसे तो सबसे खूबसूरत बात ये होती है हमारे देसी मिठाइयों की कि भाई ये जो है मीठी मीठी होती है, घर पर बन जाती है, चाहो तो बाजू वाले दुकान से ले आओ, अपने एरिया के दुकान से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, लेकिन मज़ा बहुत आता है। और भाई केक्स मिठाई वगैरह ये हमारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अलग ही हैं, और अपनी देसी मिठाइयों की बात करूं तो ये अलग ही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। आजकल बनने लगे हैं ना सिनेमैटिक यूनिवर्स अलग अलग फिल्मों के, हॉलीवुड के अलग, हिंदी फिल्मों के अलग, तो भाई रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, इनके सामने तो डाइट प्लान्स भी हवा हो जाते हैं। घर में मिठाई आते ही जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो किसी शादी के बारात वाले जश्न से कम नहीं होती। केक में तो पूरा सेलिब्रेशन वाला वाइब होता है ना, पास पड़ोस वाले अगले दिन केक का खाली डब्बा कचरे में पड़ा हुआ देखकर पूछते हैं, बर्थडे था क्या? तो इसलिए डब्बे को जो है अच्छी तरह से छुपा दीजिए, बाकी कचरे में दागी ताक झाग ना हो आपकी चीजों में। भाई मेरे साथ इसे एक दो बार हुआ है कि लाते ले जाते भी किसी ने मुझसे पूछा है बर्थडे है क्या, क्योंकि उन्होंने देखा कि केक का डिब्बा है हाथ में, केक की ब्रांडिंग है, तो भाई ये सवाल पूछना तो लाजमी है। तो ऐसी ही चीजें मजेदार, खाने से जुड़ी हुई, हमारे जीवन से जुड़ी हुई, कितनी खुशियां देती है दोस्तों, है ना। चलिए आगे कुछ और गाने हमको बिल्कुल मदहोश कर देने वाले, और वही खाने के लिए दिल नहीं पेट अब मचलेगा आपका।

दोस्तों बातें म्यूजिक कैफे में बहुत ही प्यारी ऐसी हमने की जिससे भाई पेट में चूहे अब दौड़ रहे हैं और लंच का परफेक्ट टाइम होने चला, यानी 1 बजने चले हैं। तो ये लाजमी है कि मुझे भी यहाँ पर बैठे बैठे कुछ कुछ हो रहा है पेट में, दिल में नहीं। हाय, तो वैसे दोस्तों खाने की सबसे खूबसूरत बात ये नहीं कि वो कितना टेस्टी है, बल्कि ये है कि वो हमें किन पलों से जोड़ता है। दादी नानी के हाथ का हलवा, बारिश में समोसे पकौड़े, एग्जाम के बाद वाली आइसक्रीम या बर्थडे पर दोस्तों के साथ केक, कितना गजब का अच्छा महसूस करवाता है सभी को। हर स्वाद के साथ एक याद जुड़ जाती है और तो यादों को भी मनाते हैं हम ऐसे खाने के साथ, और नाच गाना तमाम चीजें जीवन की ये सारी मस्तियां जुड़ी होती है। और यही होता है जब हम संगीत सुनते हैं, इतनी यादें इतनी चीजें खाने पीने की रोजमर्रा की भाग दौड़ की सभी याद आती है। ऐसा ही कुछ जादू होता है संगीत में जो आप सुनते हैं रोजाना म्यूजिक कैफे में और 107.1 FM रेनबो पर। तो एक आखिरी गाने के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ, बने रहे सुनते रहे। और ये जो गाना है ना, मैं कहूँगी है तो खट्टा खट्टा सा लेकिन तेवर में है ये मसालेदार।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और ठीक 1 बजे आप सुन सकेंगे दोपहर के समाचार छत्रपति संभाजी नगर केंद्र से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। हिट एंड हॉट जिसका आपको रहता है इंतजार शुरू हो चुका है। आपके मनपसंद गाने करेंगे साझा, आपकी बातें हिट एंड हॉट में 107.1 एफएम रेनबो पर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी इतनी प्यारी बातें हमारे साथ साझा करते हैं और इतनी अच्छी चीज़ें लिखते हैं कि वाकई मैं तो कहूँगी कि हम आपका जितना दिल नहीं चुराते, आप बल्कि हमारा दिल चुरा लेते हैं। मेरी बात हुई प्रकाश शिंदे जी से और बहुत सारी अच्छी चीज़ें इन्होंने लिख भेजी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी भी दी है जो कभी कभी हमसे भी चूक जाती है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना दुनिया में, तो कहाँ कहाँ ध्यान हम रखें। तो आप सभी जो हमें जानकारी भेजते हैं वो तरह तरह की होती है और उससे वाकई शो को भी चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे प्रकाश शिंदे जी ने कॉल भी किया और मैसेज भी भेजा है और आखिरी बात उनकी क्या थी वो मैं पहले पढ़ लेती हूँ क्योंकि वो जो है म्यूजिक कैफे से जुड़ी हुई है। ये लिखते हैं, जीत की खुशी को ये दुगना कर देती है, जीत की खुशी को ये दोगुना कर देती है। सिर्फ स्वाद नहीं, ये तो एक एहसास है जो हर उदास चेहरे पर मुस्कान लाती है। दिवाली का दिया

या ईद की सेवैया, मिठाई के बिना अधूरी है हर खुशियां, ये घोलती है हवाओं में मोहब्बत का रस, इसके बिना फीकी लगती है अपनी दुनिया। वैसे तो हमें मिठाई का स्वाद आकाशवाणी के खूबसूरत गीत और आपकी बातों से मिल जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और यूं ही आप हमारा दिल चुरा लेते हैं, पता है आपको। तो यहाँ पर प्रकाश शिंदे जी ने भेजी है जो फरमाइश है, एक है जिस फिल्म की, जो जीता वही सिकंदर, ये रिलीज हुई थी आज ही के दिन, इसको 34 साल हो चुके रिलीज हुए। और इन्होंने भेजा है जब प्यार किसी से होता है, इसकी फरमाइश भी। इस फिल्म को 28 साल पूरे हो गए रिलीज को, वाह क्या बात है। और बहुत सारी चीजें इन्होंने और भी लिखी है, इन्होंने लिखा है जो कल लगा था कि मुझसे ना हो पाएगा, आज वो मेरी जिद है, उसे होना ही चाहिए, राह के पत्थरों को रास्ता खुद बनना पड़ेगा, हर हाल में अब मंजिल को पाना ही चाहिए। और भी चीजें इन्होंने लिखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और पंकज मोहर जी का भी हमें कॉल भी आया है और मैसेज भी आया है, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। और ये भी कहा है कि आकाशवाणी को इन्होंने पत्र लिख भेजा है, और यहाँ पर मैं तस्वीरें देख रही हूँ इनकी चिट्ठियों के, पोस्टकार्ड्स भेजे हैं इन्होंने, बस थोड़ा समय मिल जाए तो मैं पढ़ लूंगी आपकी बातें। ये लिखते हैं, आज म्यूजिक कैफे ब्रेक फ्री दोनों इतना अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और ये वाकई दिल से अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इन्होंने लिखा है, गर्मियों के दिनों में एक आइसक्रीम खाने से जितना सुकून मिलता है बाकी चीज़ों से नहीं मिल पाता है, और कुल्फी खाने से दिल को अंदर ही से एसी जैसी ठंडक मिल जाती है, लस्सी मिल जाए तो इन दिनों सोने पे सुहागा होता है। क्या बात है। तो प्रकाश जी और पंकज जी के गाने मैं बैक टू बैक चलाऊंगी, आप बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको।
1: तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा।
0: दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको।
2: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का।
0: जहाँ गम की हवा छू के भी ना गुजरे, खुदा वो जन्नत सी जमी दे आपको। ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए 107.1 FM रेनबो के संग, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। हिट एंड हॉट चल रहा है आप सभी का बड़ा ही पसंदीदा कार्यक्रम, क्योंकि हम आपकी फरमाइशें यहाँ पर प्ले करते हैं इस समय। तो भाई अगली फरमाइशें किन की होंगी? उनका नाम है विजेंद्र घाटोल और विजय महोबिया। विजय महोबिया जी पूरे परिवार के साथ हमारे साथ बने हुए हैं और ये खंडवा से हमें मैसेज कर रहे हैं। इन्होंने जो फरमाइश जिस गाने की है वो है तेरे प्यार में पागल। प्रेम बंधन का ये गाना मैं प्ले करने वाली हूँ इनके लिए। और देखिए विजेंद्र घाटोल जी ने भी मुझे एक गाने की फरमाइश भेजी है और ये गाना है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ। और मेरी अभी अभी बात हुई प्रमोद चिंचोलकर जी से भी और इन्होंने हमें मैसेज भी किया है, कई सारी बातें भी लिखी है। तो सुबह से बने हुए हैं, आपका धन्यवाद। और ये सुनना चाहते हैं दूल्हे राजा फिल्म का गाना सुनो ससुर जी। वाह क्या बात है, तो मजेदार रहेगा ये घंटा। आपकी फरमाइशें मैं सुनूंगी यहाँ पर बैठकर, मेरे लिए ये सरप्राइजिंग होता है और मजा भी आता है। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ अशोक पाटिल जी वर्ली से हमें लिख भेजते हैं कि बहुत ही मजा आ रहा है उनको शो सुनने में और कहते हैं कि पीयूष पीने की इच्छा हो गई है ये प्रोग्राम जो इन्होंने सुना म्यूजिक कैफे उसकी वजह से। और लिखते हैं कि गाना सुनना चाहते हैं और गाने के बोल है कि छोटा बच्चा जान के हमको। वाह क्या बात है, तो कोशिश बिल्कुल होगी कि जितने गाने जा सकते हैं समाचारों के पहले उतने हम प्ले करें। बाकी सभी से यही मैं दरखास्त करूंगी कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हम आपके गाने प्ले करेंगे जितने मुमकिन हो सकते हैं। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट 107.1 एफएम रेनबो पर। ये वो शो है जहां हम आपके फरमाइश किए हुए गाने प्ले करते हैं और आपकी बातें साझा करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के साथ। और अभी मैं जिनकी फरमाइश प्ले करने वाली हूँ वो है, हाँ देख रही हूँ मैं कौन सा गाना बाकी है, तो दूल्हे राजा का गाना हमारा बाकी है प्रमोद चिंचोलकर जी इनका, और साथ ही साथ अशोक पाटिल जी ने हमें मैसेज किया है, तो ये लिखते हैं कि भाई प्रोग्राम देखते देखते जो है पीयूष पीने का मन किया, और फिर उन्होंने लिखा कि लस्सी जैसा होता है पीयूष, बिल्कुल मुझे पता है। और मुझे ये भी लगता है कि मुंबई में जितने लोग रहते या महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं सभी को पता है कि पीयूष लस्सी की तरह होता है, लेकिन मुझे लगता है पीयूष ज्यादा गाढ़ा होता है और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाकी चीजें भी होती है और बिल्कुल फ्लेवर्ड लस्सी जैसा लेकिन और गाढ़ा है ना। तो इन्होंने ये बातें लिखी और इनके लिए छोटा बच्चा जान के हमको ये गाना प्ले करने की कोशिश बिल्कुल पूरी है यहाँ पर। और मैं देख रही हूँ मुझे मैसेज आया है मुकेश वालिया इनका देहरादून से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है और इन्होंने लिखा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है हम लिसनर्स तक भी पहुँच रही है, आपका दिल से धन्यवाद। अच्छा, सारे नियम ये गाना सुनना चाहते हैं, ये बिल्कुल प्ले करेंगे। फिरोज सिकनपुरिया इनका भी हमें मैसेज आया, ये एंजॉय कर रहे हैं शो को और अपने पसंद का गाना इन्होंने हमें लिख भेजा है, तो ये भी प्ले करने की पूरी कोशिश रहेगी। अब इससे ज्यादा गाने प्ले शायद इस घंटे में नहीं हो पाएंगे, आप सभी समझते हैं कि वक्त की कमी है, समय की सीमा है, तो अभी आप सभी के लिए प्ले हो रहा है दूल्हे राजा, जिसके बाद हम प्ले करेंगे कहो ना प्यार है जो है फिरोज जी की फरमाइश, और अशोक पाटिल जी छोटा बच्चा जान के, और फिर मुकेश वाले जी इनके गाने प्ले होंगे। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूं वैशाली और अब वक्त आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का। एक आखिरी गाना प्ले होगा जो है अजय साखरे जी की फरमाइश, हाय जोरों से लगा झटका, यही कहता है ये गाना, यानी जोर का झटका, हाय धीरे से लगा, यही ऐसा ही कुछ है। एक्शन रिप्ले का गाना और ये मैं प्ले करने वाली हूँ। इन्होंने भी लिखा है कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं गानों को, प्रोग्राम्स को, धन्यवाद आपका, इंदौर से हमें लिख भेजते। और बाकी हमारे तमाम श्रोता, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अगले रिक्वेस्ट आर में अपनी फरमाइशें बिल्कुल जरूर भेजेगा, जो है हम तुम शाम को चलेगा ये 7 से 8 बजे के बीच। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत स्कोप है कि आपके पसंद के गाने प्ले होते रहें पूरे दिन। तो मेहर अरोड़ा जी ये भेजते हैं मैं फरमाइश, शुभदा जी ने भेजा, अरे वाह, और लंच भी भेजा है साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका शुक्रिया। और लिखती है कि कल ही ये रसमलाई केक ऑर्डर कर लेती हूँ, हाँ क्या बात है। और मैं देख रही हूँ कि हितेंद्र दास जी ने भी हमें मैसेज किया है, राजेंद्र जुठानी जी का गाना हम प्ले नहीं कर पाए, वो क्योंकि ऑलरेडी जस्ट प्ले हो चुका था, बस शुक्रिया आप हमारे साथ बने रहे। और महेश बोरा जी अजमेर राजस्थान से हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर जो है प्रमोद राउत जी धाराशिव से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ मुकेश कश्यप जी है बने हुए यहाँ पर, चेतन कुमार जी गया बिहार से, हीरामणि वर्मा जी बने हुए हैं, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी हैं जुड़ी हुई, नितिन स्वामी जी एरोली से बने हुए हैं। और यहाँ पर फ्रिज खोल के देखा तो ना आइसक्रीम है, ना केक, ना चॉकलेट, अभी आइसक्रीम खाने का इतना मन बन गया कि ऑर्डर किया है, बस ऑर्डर आने में ही थोड़ी सी देर है, ऐसा लिखती है हमें आरती मुंबई से, थैंक यू सो मच। दिग्दर्शन और कविता हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। और सई पाटिल हमें मैसेज लिखती है कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ परिंदा फिल्म का गाना। ओहो, ये बड़ी देर से आपने मैसेज जी, तो आप दोनों को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, खूब एंजॉय कीजिए और एक दूसरे को गाना गा के सुनाएंगे भाई। और यहाँ पर विठल मुंगसे जी ने भी हमें मैसेज किया अहिल्या नगर से, और इन्होंने भी फरमाइश भेजी है यहाँ पर। और भी हमारे श्रोता हैं, प्रथमेश डोंगरी मुंबई विक्रोली से, राजेंद्र परमार जी पूरे टाइम हमारे साथ बने हुए थे, धन्यवाद आपका, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, अच्छे समय में विघ्न आते हैं, हम मित्रों और परिवार मिलकर विघ्न दूर कर देते हैं, प्यार और सद्भावना रखे कोई काम मुश्किल नहीं, ऐसा उन्होंने लिख भेजा है। संदीप कुमार जी ने भी मैसेज भेजा है और बहुत इमोशनल मैसेज है यहाँ पर। और मुझे जो है नयन भावनगर से भी मैसेज करते हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी ने मैसेज किया, और पीयूष कुमार हमें मैसेज करते हैं बाबा दादर से, महेश शेट्टी, स्वप्निल भी। तो भाई बिल्कुल 1 ही मिनट बचा है, तो कोशिश है कि फिर भी आपको सुनाए हम ये गाना, और ठीक 2 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली से प्रसारित होने वाले मिड डे न्यूज। मैं हूँ वैशाली, मिलूंगी आपसे अगले शुक्रवार को इसी टाइम 11 से 2 के बीच दोपहर के समय।

0: कपूर, आकाशवाणी न्यूज शिमला।
1: In Malaysia, Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Line Kjærfeldt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. Chaliha's exit India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent 23-21, 18-21, 11-21. In 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
3: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिव

0: कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
5: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरास और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ

0: में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देखिए जी, मकानी गणना तो हो जाएगी, आपकी गणना कब होगी? हाँ, क्लास के अंदर में याद आता था जब गणनाएं होती थी और प्रिंसिपल साहब कहते थे जरा बताओ छात्र कितने आपकी कक्षा के अंदर। हाँ चलिए कक्षा से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और थोड़ा सा हंसी मजाक वाला माहौल बनाते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन खूबसूरत बातों के सिलसिलों के साथ में थोड़ी जानकारी भी ज़रूरी है। जहाँ तक बात की थी मैंने आपसे आरसी की, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर अप करके मुझे प्रफुल्ल ने बताया कि उनका नाम जो है वो आप कह देना रिद्धि जो है कूल है, और बाकी में जो उनका नाम है वो है रिद्धि त्रिवेदी। तो देखिए अगर कभी कभी खामी हो जाती है, उस खामी को किस तरह से करेक्ट करना है ये आपके जो दोस्त हैं वही आपको बताते हैं, और मेरी इस खामी को बहुत बढ़िया तरीके से बताया पूरा प्रफुल्ल ने। और इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी खामियां जो है आपके दोस्त बताते रहें जिससे आप हमेशा परिपूर्ण रहें। उसी के साथ आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ के बारे में और बताता हूँ। आज है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आप सुन लगो भाई साहब, हम थोड़े साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट नहीं है, पर घर के अंदर पौधे वौधे पानी तो डालते होंगे, है कि नहीं? गुलाब की खुशबू तो आती होगी ना कभी कभी, है? या घर में पुदीना और मिर्ची कभी तो कुछ उगाया होगा, है? नहीं कोई बात नहीं, नहीं उगाया तो उगा लो, और अगर उगा लिया है तो भाई साहब आप धन्यवाद कह देना, क्योंकि आज है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अपने गमले में थोड़ा सा पानी चढ़ाना और कह देना भाई साहब महक देने के लिए, जीवन में हरियाली बनकर रखने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सात समुंदर पार से गाना सुना रहा हूं, बड़ा बेहतरीन सा है, साधना सरगम की आवाज में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वेलकम बैक दोस्तों, 5 मिनट ठीक 31 मिनट हो चुके हैं और टिक टिक करती हुई घड़ी की इकाई इशारा कर रही है कि आपके साथ में एक और आवाज बुलंद की जाए, और वो आवाज बुलंदी की जो है वो है आरटी की। देखिए, आरसी से आरटी हो गई हैं और अब आप ही पहचानेगा उनका पूरा नाम क्या हो सकता है, गैस करेगा आज, ठीक है ना। चलिए आज आपको नाम की गैस की भी जो है कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं बिना नाम के कि आप ही बताओ कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे महंगा खाना कितने रुपए का खाया है।
4: ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन कर लिया केत आपने, क्योंकि हम रहते हैं मुंबई में और मुंबई में तो आपको पता है 10 रुपए से लगाकर यहाँ पर 10,000 की डिशेस मिलती हैं। बट जितना मुझे याद है, मैंने सबसे महंगा खाना 1,000 रुपए की एक प्लेट खाया हुआ है।
3: क्या बात है, 1,000 रुपए की प्लेट खा ली आपने खाना, मतलब पैसे वाले तो हो। अच्छा, आप जानते हैं कि मतलब अगर आपको कहा जाए कि अरबों का खाना खाओ और एक ही टाइम पे खाना खाना है, तो आपने कभी सपने में सोचा कि इतना महंगा खाना खा सकते हो, या कभी ऐसा सोचा हो कि यार मैं ताज में जाऊं, यार मैं बड़ा अच्छा खाना खाऊं, यार कभी मैं हयात में जाऊं, कभी मैं दुबई में जाऊं, यार मतलब कभी खाने को लेकर ऐसी फैंटेसी आपने करी है।
4: सच कहूँ तो हाँ, क्योंकि शौक से तो मैं भी फूडी हूँ, तो फिर लगता है कि हम दुनिया के हर एक कोने में जाएं और वहां पर मुझे उनकी स्पेशल डिशेस खाने का मौका मिले।
3: अच्छा, मान के चलिए आपसे जिनी पूछता है कि आज आप बताओ आप क्या खाना चाहते हो, तो आप क्या खाना चाहोगे बताओ।
4: अभी फिलहाल जो मूड हो रहा है वो हो रहा है एकदम फुल्ली लोडेड चीज बर्स्ट फुल्ली ग्रिल्ड सैंडविचेस की।
3: क्या बात है, मतलब आपने महंगाई में भी सस्ताई वाले मिडिल क्लास वाली सोच जो है बरकरार रखी है। इसे बोलते हैं कि मिडिल क्लास जो होते हैं भाई साहब, दिमाग से जो है कितने भी जो है वो अमीर हो जाए, लेकिन जो सोच है ना वो उनकी बताती है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। क्या बात है, लेकिन मैं आज आपको एक बड़ा बेहतरीन किस्सा बताना चाहूंगा। एक इंसान जिसने भाई साहब जो पिज्जा खाया वो सिर्फ रुपए में भी नहीं था, कीमतों उसकी थी वो अरबों रुपए की। आप भी सोच रहे कैसी कहानियां बोझ रहा हूं। देखिए, आज है बिटकॉइन पिज्जा डे। बिटकॉइन पिज्जा डे आखिर में है क्या? 2010 में आज के दिन लॉस एंजेलो हाइना जो है एक आदमी था, उसने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे थे। मतलब ये पहला कमर्शियल ट्रांजेक्शन था। 10,000 बिटकॉइन की कीमत आप जानते हैं आज कितनी होगी? कितनी होगी, कुछ अंदाजा लगाइए।
4: नहीं है अंदाजा,
3: आप मिडिल क्लास वाले सोच मतलब बता, अंदाजा भी नहीं लगा,
4: नहीं लगाना।
3: देखिए, अरबों रुपए में है आज की तारीख में उसकी कीमत, लेकिन एक जमाना था जब बिटकॉइन बहुत तेजी से गिर रहे थे, और जब शुरुआती दौर चल रहा था तो उस शुरुआती दौर में उस बंदे ने 10,000 बिटकॉइन दिए और कहा भाई साहब मुझे जो है 2 पिज्जा दे दे। अब जब कुछ नहीं मिल रहा भाई, कुछ मिल जाए खाने को ले लो, तो उस बंदे ने ले लिया और दुनिया का वो सबसे महंगा खाना आज तक की तारीख में गिना जाता, 10,000 बिटकॉइन का खाना था। तो चलिए, महंगाई के साथ में जो है हम जुड़ी चुके हैं, क्योंकि अब तो दूध ही महंगा हो गया है ना, पेट्रोल ही महंगा हो गया है, अब तो आपकी आवाज़ ही महंगी हो गई, अभी तक लोगों को आपका नाम ही नहीं पता। तो आप बताइए आपके नाम से जुड़े कोई किस्से हो, और अपना नाम हमारे जितने भी लिसनर्स को, क्या आपका नाम है और कभी नाम से जुड़ी कोई यादगार आपकी?
4: हाँ, वैसे तो कई बार जब मैं पहली बार मेरा नाम कहती हूँ रिद्धि, तो ये जो रिद्धि वाला कष्ट है वो सबको सुनाई नहीं देता, उनको कई बार सुनाई देता है निधि, या फिर कई बार सुनाई देता है सिद्धि, तो मुझे और जोर से कहना पड़ता है कि अरे नहीं रिद्धि। तो हाँ, नाम के साथ तो ऐसे किस्से हुए ही है।
3: तो आपको नाम के साथ में रिद्धि के साथ में कोई सिद्धि मिली है अभी तक?
4: हाँ हाँ, मिली है, मेरी कजिन है और दूसरे फ्रेंड्स भी है जो हमेशा रिद्धि और सिद्धि साथ साथ कहते हैं।
3: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए इस बात पर एक बेहतरीन सा ट्रैक सुनते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो है बादशाह तो बेशक ना हो, पर बादशाह की बेगम तो शायद वहां बैठी हुई है, पूछना पड़ेगा बेगम है भी कि नहीं है। फिलहाल अभिजीत की आवाजें सुनते हैं बादशाह, और बादशाह ये 107.1 FM पर बने रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं रिद्धि, जिनकी साथी हैं सिद्धि, और फिलहाल वो आज आरटी आरसी सब चल रही हैं।

0: मुकाला मुकाबला है जी, किसका मुकाला कर दिया जी हैं? वैसे तो हमने देखा था पुराने जमाने में उसका मुकाला किया जाता था जो कुछ गलत काम करता था, है कि नहीं? अरे दे जी,
1: सही कहा।
0: तो आप बताइए कि आपका जो सही है उसमें आपने कभी किसी का मुकाला किया है?
1: नहीं नहीं, मैंने मुंह काला तो नहीं किया है।
0: अच्छा।
1: बस अगर उनकी जुबान काली हो तो मैं कुछ ऐसा बोल जाती हूँ कि काली जुबान थोड़ी सफेद होना शुरू हो जाए।
0: जरा बताइए हमें क्या कहा आपने ऐसा।
1: मैं ये मानती हूँ केत के अगर आपको सच में किसी का मुकाबला करना हो
0: जी
1: तो शब्दों के बाण चलाने आपको आने चाहिए।
0: अच्छा।
1: वो भी बिना किसी गलत शब्द के, अच्छी आवाज और बेहतरीन शब्दों से आप उनको हरा सकते हैं।
0: मतलब आप मेरी बात कर रही हैं?
1: नहीं नहीं, हम तो आपसे सीख रहे हैं।
0: तभी तो मैंने कहा कि आपने बोला बिना गलत शब्द के सही बात कर दे और बिना बाण चलाए। आपने इतनी जो बातें करी वो एक पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करी, अब आपने कहा मेरे बारे में नहीं करी, मतलब मैं सब चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। चलिए कोई नहीं, हम इससे थोड़ी आगे आते हैं और शर्लैम खोम्स वाली थोड़ी हस्ती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने कभी ऐसी कॉमिक्स पढ़ी या कभी आपने कुछ ऐसा चीज पढ़ा जिसके अंदर आपको जासूसी वाली चीजें पढ़ी हो कभी आपने जीवन के अंदर?
1: ऐसे तो मुझे जासूसी वाली पिक्चरें पसंद है, अगर उसके बारे में कुछ लिखा हो तो वो भी पसंद है कि आगे क्या होगा, फिर क्या होगा।
0: अच्छा, कभी आपने खुद से कभी जासूसी करी आपने?
1: हाँ।
0: क्या जासूसी करी, किस्सा बताइए।
1: ये अगर जासूसी बता दूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना, उनको पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो जासूसी करती।
0: अरे देखिए, हमारे लिसनर सुनने के लिए तैयार हैं आपकी बातें कि ऐसी कौन कौन सी जासूसी करी, क्या उन्हें भी कोई टोटका बता दीजिए।
1: नहीं नहीं, इतना कुछ डिटेल नहीं, बट इतना जरूर है कि हमारे घर पर या कहीं भी बाहर कुछ गुम हो जाता है तो उन्हें लगता है कि रिद्धि ढूंढ लेगी।
0: अरे वाह।
1: तो मैं बकायदा एकदम प्रोफेशनल CID की तरह उनसे छोटी छोटी डिटेल्स मांगती हूँ कि आपने आखिरी बार ये चप्पल की जोड़ी कहाँ खोली थी, और फिर घूम घुमा कर कहाँ चली गई, और मैं उसको ढूंढने निकल पड़ती हूँ और लाकर दे देती हूँ।
0: तो मतलब कभी भी किसी की मंदिर के चप्पल जो है चोरी हो जाए या फिर कभी किसी चर्च के बाहर चप्पल चोरी हो जाए तो मतलब आप जो है ढूंढ के ला सकते हैं।
1: कोशिश तो यही है कि अगर हमारी चीज कोई लेकर चला जाए तो पूरे आखिरी दम तक कोशिश करो उसको वापस लाने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात। आप जानते हो, आपने तो शर्लक होम्स के जो किस्से बताए जो आज की तारीख में हमारे हर घरों में, वैसे तो हमारे घर की जो सासें होती हैं वो जो है इस मामले में माहिर होती हैं। अरे देखो उसके घर में क्या पक रहा है, अरे इस घर में नई बहू यही है, हैं इसने इतना सोना खरीद लिया है, वो जो है घर की चीजें तो होती हैं, लेकिन शर्लक होम्स का जो एग्जैक्ट जो हमने सुने हैं नॉवल है जिसके ऊपर किताबें लिखी हैं जिसके ऊपर इतनी इतनी फिल्में बनी हैं, उसके जो राइटर हैं उनका नाम है सर आर्थर कॉनन, और आज उनका है बर्थडे। तो मुझे लग रहा है कि एक बेहतरीन सा ट्रैक उन्हें सुनाना चाहिए, क्या कहते हो आप?
1: हाँ हाँ,
0: देखिए मैं तो खलनायक हूँ तो खलनायक का ट्रैक सुनाता हूँ।

0: सुना आपने, बड़ा बेहतरीन सा गाना खलनायक का। 5:56 हो गए हैं और ये जो आंकड़ा है बता रहा है कि अब आप सुनेंगे आरटीओ की आवाज़। यानी कि ना दर, मैं आरटीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी अपनी आरटीओ है, यानी कि रिद्धि त्रिवेदी इन आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो। जी रिद्धि जी, तो आप बताइए, आप हमें किससे बता रही थी, कई सारे, तो मैं जानना चाहूंगा, खलनायक का हमने गाना सुना, आप कभी कभी लाइफ में खलनायक बनी आप?
1: हाँ, कई बार बनी हूँ, जैसे सही और अच्छे मुद्दों के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ बड़ा रोल प्ले करना ही है तो सही वजह के लिए कीजिए। जैसे किसी सोते हुए कुत्ते को कोई लात मार दे तो फिर मैं जोर से चिल्ला पड़ती हूँ कि तू ऐसा नहीं कर सकता, या
0: पहले से उठा फिर लात मार।
1: तो मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए आई बिलीव कि अगर मैं खलनायक बन भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं है।
0: क्या बात है,
1: छोटी मोटी चीजों के लिए कभी कभी
0: कभी कभी। चलिए अब आपको थोड़ा बड़ी बड़ी चीज के बारे में बताते हैं। देखिए, हम हमेशा से एक बात जानते हैं कि जब तक कोई चीज़ नहीं बनी है, हम जानते हैं कि हम उसे ना कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए अगर आकाश में कभी, आज तो हम देखते हैं इतने सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, लेकिन कभी एक ऐसा जमाना था आप किसी से कोई कहते कि भाई आकाश में हम लोग उड़ेंगे तो लोग मजाक उड़ाते थे, और बात सच भी है,
1: पागल कहते थे।
0: करेक्ट। अब आप मान के चलिए, मैं आपसे कहूँ कि इंसान गायब हो सकता है तो आप मानेंगे नहीं, बात हंसेंगे कि क्या बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मान के चलिए कि आज से 100 वर्षों पहले अगर ये वाली बात कही जाती कि आकाश में इंसान उड़ सकता है तो ये बात मजाक की मानी जाती, नहीं मानी जाती। तो आज यही बड़ी एक अच्छी चीज़ है, मैंने सोचा शेयर की जाए। द राइट ब्रदर्स करके एक जो है जोड़ी है, और ये जो है दो भाइयों की जोड़ी है जिनका एक का नाम है ऑरविल और दूसरे का नाम है विल्बर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है हवाई जहाज बनाया, एक ऐसा हवाई जहाज जिसे फ्लाइंग मशीन के नाम पर इन्होंने पेटेंट कराया था आज के दिन, यानी कि 22 मई 1906 में। लोगों ने उन्हें भी पागल कहा था। हाँ बिल्कुल, उन्हें नहीं पता कि उस जमाने में रिद्धि हुआ करती थी।
1: सही
0: का। पागल आवाज भी कहती तब भी कहती थी यार। आप वैसे यार देखा जाए तो यार इस पूरी दुनिया के अभिमन्यु हो, जो होते हैं ना लोग जो मतलब कहीं मरते नहीं, आपने सुना है वो एक चक्र भी हुआ था महाभारत का, उसमें एक कैरेक्टर था। तो मुझे लग रहा है, देखिए आप कहाँ से कहाँ तक आए, 1906 से लेकर आज चल रहा है 2026, पूरे 120 साल की हो गई हैं आप, है ना। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त जब लोगों ने इनसे कहा कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, और इन्होंने हवाई जहाज बनाया और फ्लाइंग मशीन नाम के इसको पेटेंट कराया, तो मैं इतने कहना चाहूँगा, सपनों को मत छोड़ो, और जहाँ तक बात है लोगों को खलनायक बनने दो, अगर रिद्धि हंसती किसी ऊपर तो हंसने दो भाई साहब, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करो। हैं,
1: सही का,
0: सही गाना। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, बड़ा बेहतरीन सा गाना होने वाला है। ये गाना है अलका याग्निक की आवाज़ में, टिप टिप बरसा पानी, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मुंबई में आगाज़ होने वाला है बारिश का, ऐसा न्यूज़ में कहा गया है। वैसे तो मुंबई की बारिश जुलाई में भी आती है, जून में भी आती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि शायद केरल से होती हुई, साउथ से होती हुई जल्दी दस्तक शायद दे जाए।

0: खेलना खाना वो फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छूत छात का ध्यान कहा था, स्नेह सभी से अपना, कोई अपना या बेगाना कहा। मैं रोई, सबके आंसू निकले, मैं हंसी, सभी हंसते थे, मेरे संग में खेलने वाले मेरे मन में बसते थे। और आखिरी पंक्ति, वो बचपन का दूध भात अब कौन मुझे पहुंचाएगा, वो प्यार दुलार सहारा अब कौन हृदय में लाएगा।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ने से कि ये आप ही ने लिखी है। सुभद्रा कुमारी जी चौहान अगर आज सुनेंगी तो सुनेंगी, और सुनने के बाद कहेंगी कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जो सुनाई हुई ये कविता उन्होंने बाद में लिखी है।
0: नहीं नहीं, वो तो देखिए ये जो हमारे कवि और कवियत्री होते हैं ये अमर होते हैं, क्योंकि उनके इस संसार से चले जाने के बाद भी उनका काम बोलता है, उनके काम से हम उन्हें याद करते हैं।
1: क्या बात है, और आपने तो इसी के बहाने जो है बचपना याद दिला दिया, क्या बात है। और मैं भी बचपन की जब आपने बात करी तो एक मुझे याद आती है, हमारे भोलेपन की एक थाली में जब खाना खाते थे तो घर वाले ऐसे बात करते थे कि चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में और मुन्ना को दे प्याली में। जानती हैं बालगीत नहीं है बेसिकली, ये छोटे से जो है ऐसी पंक्ति जो है घर वाले कह देते थे। कभी इसके मतलब आपने जानने की कोशिश करी आखिर इसका मतलब क्या है? मैं वापस बोलता हूँ, अगर आप उससे थोड़ा सा गैस कर पाएं कि चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में और मुन्ने को दे प्याली में, आपने सुनी है कभी ये?
0: सुनी है।
1: चलिए कोई बात नहीं, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं अपने आप को ज्यादा इस वक्त जो है श्रीमान प्रेमचंद नहीं समझूंगा। मैं भी बिल्कुल आप जैसे नादान था, और मुझे लगा कि आज ये बात अपने जरिए आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। इसका मतलब ये है कि हम चाहे कितने बड़े हो जाएं, महंगी महंगी गाड़ियां आ जाएं, लेकिन वो प्यारी जो खुशी है आपस में बांट कर खाने में आती है ना, वो भाई साहब किसी भी चीज़ों में नहीं है। सड़कों पर आपने देखा होगा जब लोग जो हैं गरीबी में पल रहे हैं लेकिन वो खुश रहते हैं, बहुत कम बीमारियाँ होती हैं और बहुत कम इंश्योरेंस,
0: सुकून से सोते हैं।
1: तो आप भी चाहते हैं सड़कों पर सोएं?
0: नहीं,
1: मतलब बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे नहीं भाई, सड़कों पर नहीं सोएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम बात ही गहराई को समझ गए हैं। अगला जो ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है बचपन से जुड़ा हुआ, और ये ट्रैक होने वाला है रमन महादेवन की आवाज में, तारे जमीन पर से।

0: सूरज से आग हम बाद में लेंगे, शाम हो गई है, सूरज ऐसे ढल गया भाई साहब, क्यों आग वाग लगानी है, वैसे बारिश का मौसम कराओ, ठंडा कराओ, क्यों रिद्धि जी?
1: सही कहा
0: मैंने? तो चलिए पूरा सही कर देते हैं। और आप बताइए, आप कुछ दूध भात की बात कर रही थी, सुनाइए क्या बात बता रही थी अब हमें?
1: मैं ये पूछ रही थी कि ये जो दूध भात वाली जो पंक्ति हमने सुनी कविता में, वो कितनी ज्यादा नॉस्टैल्जिया थी कि पुराने समय में लोग इसी तरह से खाते थे, जैसे मान लो ठंडी चावल हो कल के बने हुए और उसको सुबह नाश्ते के तौर पे दूध के साथ खा लिया, थोड़ी सी चीनी ऊपर डाल दिया, हाँ मतलब स्वादिष्ट भोजन, सिंपल सादा। और कई बार तो रोटी के ऊपर, चपातियों के ऊपर शक्कर चीनी थोड़ी सी डालकर उसको राउंड राउंड कर फिर हमने एज अ फ्रेंकी, उस जमाने की हमारी देसी जुगाड़ वाली फ्रेंकी थी, वो खा लेते थे या टिफिन में वो ले जा करते थे। तो काफी पुरानी चीजें हैं, बट जब याद आती है तो चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आती है
0: कि हम कभी गरीब भी थे।
1: नहीं नहीं हम कभी असली हुआ करते थे।
0: तो आप अभी भी दूध भात और चावल जो है वो आप कल के जो है वो खाएंगी, ये भी कहना चाहती है?
1: तो अभी तो वो चावल भी पहले जैसे नहीं रहे, ना दूध पहले जैसा रहा।
0: क्यों, अभी दूध गाय की जगह कोई इंसान देने लगा है?
1: हाँ कह सकते हैं।
0: बताइए कौन से इंसान ने दूध दिया?
1: अरे यार, दिया ना हो बट अपना योगदान तो जरूर देते है उसके अंदर किसी ना किसी रूप से मिलावट कर।
0: अब देखिए क्या बताएं, मतलब जो शब्दों में अगर आप इंसान से कोई जीत ना सके तो क्या करो, कुछ ही बना के आप जो है बोल दो। तो ये हमारी जो रिद्धि जी है ऐसी बना बना के बोलेंगी। चलिए कोई नहीं, अगली आप जो कविता सुनाने वाली वो तो सुना दी हमें।
1: हाँ, तो अगली कविता भी कुछ ऐसी ही है
0: जहाँ दूध और भात की
1: नहीं, दूध और भात तो हो चुका है, लेकिन अब वो साथी जो उसके साथ हम कभी कभी ना छेड़ा छाड़ी करते हैं कि कोयल जब कुहू कहती है तो हम भी उसे छेड़ते हैं कुहू बोलकर, और वो दोबारा से कुहू करती है, तो ये एक अलग ही खेल चलता है। और सुभद्रा जी कहती है, कौन तुम, किस देश से आई हो, क्यों कुहू कुहू की तान सुनाई हो, आम की डाली पर बैठी काली, गीत सुनाकर जग को मतवाली, तूने किसके मन को हर्षाया है, किस विरही का विरह बढ़ाया है, कहती हो क्या किसका संदेशा, क्यों हरा भरा किया बन का वेशा, तेरे स्वर में पीड़ा है या प्यार, कौन समझ पाया है ये सार, मैं भी सुनकर तेरी कुहू कुहू भूल गई हूँ सारे दुख दर्द, मन मेरा भी गाने को करता पर जाने क्यों आंखें भर आई,
0: क्यों आंखें भर आई
1: पता नहीं,
0: क्योंकि आपने पोएम ऐसे सुनाई।
1: हाँ।
0: क्या बात है, मतलब आपने जो पोएम सुनाई है सुनाने के अंदाज में ऐसी, मतलब जो है लोगों के आंखों में आंसू आ गए या पोएम ऐसी है,
1: कविता ऐसी है जो शायद दिल को छू जाए।
0: अच्छा अच्छा, और आंखों से आंसू आ जाए।
1: हाँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। चलिए इस बात पर मैं आपको एक बेहतरीन से एड सुनाता हूँ, बस आपके वो सुन के आंसू ना निकले, मैं उम्मीद ये करता हूँ। आप खुश रहिए और बहुत जल्दी मिलेंगे गाने के खूबसूरत गीत के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक दोस्तों। 6:39 और 29 सेकंड हो गए हैं और आज वापस से 22 तारीख की एंट्री हो गई है। क्योंकि वापस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 22 तारीख को काफ़ी लोग एंट्री करते हैं। किस चीज़ की ये बताएंगे आपको रिद्धि जी। रिद्धि जी किस चीज़ की एंट्री करते हैं 22 तारीख को?
1: 22 तारीख को किस चीज़ की एंट्री करते हैं?
0: हम पानी और धूप की एंट्री करेंगे। आप जो भी सुनाएंगे हमें खूबसूरत सी कविता।
1: पानी और धूप का ऐसा मेल है कि पानी और धूप आपस में कहते हैं कि देख तू जरूरी है या मैं, तो वो कहती है तू भी जरूरी है मैं भी जरूरी हूँ। तो इसी पर हमारी कविता है।
0: जी जी।
1: पानी बरसा छम छम छम, धूप खिली चम चम चम, पानी बोला मैं जीवन हूँ, धूप हंसी मैं भी कम नहीं हूँ, पानी ने धरती को धोया, धूप ने आंचल सुखा दिया, पानी से हरी हुई हरियाली, धूप से सोना चमक डाली, पानी बोला मेरे बिन सूखा, धूप कही मेरे बिन भीगा, दोनों मिलकर खेल रचाए, जग को सुंदर रूप दिखाए, कभी मैं जाऊं कभी तू आए, बारी बारी से मुस्काए, ना मैं बड़ी ना तू छोटा, हम दोनों से जग का नाता, बच्चे बोले देखो भाई इंद्रधनुष की छटा छाई, पानी धूप की दोस्ती से रंग बिरंगी सपने जैसे आए।
0: क्या बात है। पांचवी कक्षा में आप मतलब जो है अच्छे से पढ़ाई करी आपने।
1: हाँ हाँ, मैंने तो खूब अच्छे से कविताएं तो बहुत अच्छे से बोली है केत।
0: क्या बात है,
1: मजा आ जाए।
0: नहीं आपने बहुत बढ़िया कविता जो है वो पढ़ी है। अब आपको जो है मुझे लग रहा है रेडियो जॉकी के अलावा एक परीक्षा के अंदर आपको ऐसे टीचर अपॉइंट किया जा सकता है।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: बिल्कुल आपसे कहेंगे, लेकिन एक धन्यवाद देने से पहले आपको कुछ और चीज़ भी सुना देते हैं। क्या कहते हैं आप, सुना दिया कोई बेहतरीन सी चीज़ आपको?
1: हाँ
0: चलिए, बेहतरीन सी चीज़ जो है वो बड़ी ही खूबसूरत है और ये गूंजने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की आवाज़ में ही। और ये आवाज़ है, कहते हैं बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। किन के बारे में बात हो रही है?
1: रानी लक्ष्मीबाई की।
0: क्या बात है, कुछ उनके बारे में बताइए जो आप जानना हो आपने।
1: हाँ, एक बहुत ही व्यक्तिगत किस्सा है कि जब बहुत पहले हम छोटे थे, स्कूल में थे, तब उनके नाम से बहुत सारे ऐसे नाटक हुए, सीरियल्स बने। लेकिन जब मैंने उनका पहली बार सीरियल देखा, मैंने जाना कि रानी लक्ष्मीबाई कौन है। शादी से पहले उनकी जब कहानी सुनी, उनके बाद उनका संघर्ष देखा, किस तरह से वो लड़ी है। और जब ऐसी स्त्रियां हमारे इस भारत भूमि पर पैदा हुई और ऐसी स्त्रियों ने ना केवल रणभूमि में अपनी रूपरेखा रखी, साथ ही साथ बहुत सारे कलाओं में भी निपुण थी, तो जब मैं उनको देखती थी तो छोटी सी उम्र में मेरे भी ख्याल आते थे कि यार हमें इसी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। हम क्यों लड़कियां किसी और पर निर्भर रहे कि हमारी कोई रक्षा करने आए, क्यों ना हम खुद की रक्षा करना सीखे
0: क्या
1: और हो
0: बात है।
1: सके साथ साथ हमारे साथ जो दूसरे हैं उनकी भी रक्षा करें। तो रानी लक्ष्मीबाई तो भाई मेरे लिए तो वो एक आइडल है।
0: क्या बात है, सभी के लिए आइडल है। और वैसे आप अपने जीवन में रानी लक्ष्मीबाई कब बनती हैं, जब आप घर में काम करती हैं या फिर सड़क पर होती हैं?
1: मुझे लगता है जब मैं सड़क पर होती हूँ तो वो रानी लक्ष्मीबाई वाला एक आ जाता है मूड।
0: जी बहुत बढ़िया बात की आपने। अब ब्रेक में आपको बताना चाहूँगा, ऐसे ही इन्होंने बहुत खूबसूरत से किस्से सुनाए और बताया इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी जैसे जो है किस तरह से जो है एक चोर को इन्होंने फ़ोन किया और उस चोर ने फ़ोन उठा भी लिया क्योंकि बड़ा नादान था। वो किस्सा भी अगर आप सुनाना चाहें या सुनना चाहें तो मैं बताना चाहूँगा, एक खूबसूरत ट्रैक आएगा, उसके बाद आप ही को सुनाएंगे रिद्धि वो किस्सा कि किस तरह से इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के रूप में कह सकते हैं कि अपना बैग बचा लिया था या यूं को अपना फ़ोन बचा लिया था और किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ शर्लक होम्स भी बन गई थी। चलिए सुनते हैं हेमा सरदेसाई के बारे में, बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक जो होने वाला है चक दे इंडिया से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकाल भारतातल्या गावोगावी गच्चींचं रूप बदलून गेलंय। जिथे आधी फक्त पापड आणि कपडे वाळत घातले जायचे, तिथे आता वीज बिल शून्य होत आहे। गावोगावी लोक सोलर पॅनल बसवत आहेत। तुम्ही बसवून घ्या। भारत सरकार तब्बल 78,000 सबसिडी देते। 30 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी तर आधीच याचा फायदा घेतलाय।
2: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा PM सूर्यघर.gov.in वर।

0: अभी आपने सुना सही हो नहीं, अगला आप सुनने वाले हैं तेरी दीवानी कैलाश खेर साहब की आवाज में। फिलहाल आप 7:05 पे सुनेंगे मराठी खबरें, पर वो रिद्धि की आवाज में नहीं होंगी, वो किसी और की आवाज में होंगी, क्योंकि मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहे हैं और सभी लोग जो हैं वेलकम कर रहे हैं रिद्धि का FM रेनबो में। तहे दिल से शुक्रिया वो कहना चाहती हैं, लेकिन चांस की बात है इस वक्त वो जो हैं मशरूफ हैं जो दूसरा कार्यक्रम हमारा होने वाला उसकी कश्मकश में। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं उन सबको वो खुद धन्यवाद कहेंगी शायद अगले शो में अगर वो चाहेंगी, क्योंकि देखिए जिनकी तारीफ हुई अगर वही धन्यवाद कहें तो बेहतर लगता है, नहीं तो हमें तो दाल चावल समझती हैं वो या फिर भात चावल समझ के खिला देंगी। अगला ट्रैक आप सुनिए तेरी दीवानी, और उसके बाद में सुनिएगा मराठी समाचार, और उसके बाद में आपको मैं सुनाऊंगा भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा के बहुत ही खूबसूरत से ट्रिवियास।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

इस गली और में दोस्तों आपका स्वागत है। शाम के 7:58 हो गए हैं और टिक टिक करती हुई घड़ी की का इशारा कर रही है कि आज आपको भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा यानी कि बॉलीवुड ट्रिविया सुनाए जाएं। और इस घंटे हम बात करने वाले हैं ना सिर्फ सिनेमा की खास तौर पे खास साल की यानी कि 2018 की कुछ बेहतरीन फिल्में जिन्होंने थिएटर्स में कभी हंसाया, कभी रुलाया तो कभी हैरान कर दिया। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड से लेकर फिल्मों के पीछे अनसुनी कहानियां आज सब आपके समक्ष हाजिर होंगी। फिलहाल इस घंटे का सबसे पहला ट्रैक आपके समक्ष आ रहा है रफ्तार की आवाज में अंधा धुन से।

0: देखिए नैना का क्या कसूर होगा मैं पता नहीं, लेकिन हमारा कसूर तो इतना है कि हमने सिर्फ दाल भात और जो है चीनी का जो संगम है वो आज रिद्धि के मुझे सुना है, और हमें एहसास रहेगा जब तक हम खा नहीं लेंगे और एहसास नहीं कर लेंगे कि हम भी लोअर मिडिल क्लास से हैं। और बेसिकली ये जो चीज़ है ना भाई, और बड़ी अच्छी है, आपका पूरा फुल नॉस्टैल्जिया आपको याद दिला देती है कि आप कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: हाँ ना, तो इसी बात पे बताइए, अंधाधुन का आपने गाना सुना है, आपको क्या लगता है इस फिल्म का जो टाइटल है वो किस नाम पे रखा गया होगा या किस लिए रखा गया होगा?
1: अंधाधुन।
0: हाँ, क्यों रखा गया है?
1: क्या पता, अभी कई लोग ऐसे हैं या कह सकते हैं अधिकतर लोग ऐसे हैं कि बस जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, बस अंधाधुन चल रही है जिंदगी।
0: अच्छा, तो इसीलिए
1: एंजॉय करो।
0: तो अंधाधुन इसका फिल्म से क्या लेना देना, मतलब ये टाइटल का आपने बोलो ना, ये मैंने पूछा सवाल कुछ और मैंने जवाब कुछ और दिया, तो ये दाल भात का असर है या?
1: हाँ, बस ये अंधाधुन का असर है, बस अंधाधुन का जवाब ऐसे ही मिलता है।
0: क्या बात है, कभी रानी लक्ष्मीबाई तो कभी आपका जो है वो भात और दूध और फिर आपकी कोयल और फिर आपकी बचपनी कहानियाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं आप और बहुत ही बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आज ये बड़े ही खूबसूरत सा ट्रिविया आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, और ये ट्रिविया भी मुझे जो है मैंने भी गूगल से निकाला, मैं भी कोई ज्ञानमुखी नहीं हूँ कि मैं अपने चक्षु खोल कर आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो बताना चाहूँगा इसके नाम के अंदर ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि अंधा, इस फिल्म के अंदर आपने फिल्म देखी है अंधाधुन?
1: नहीं देखी।
0: कौन सी देखी आपने? दिलीप कुमार साहब की फिल्म में देखी है है ना? नहीं नहीं बढ़िया है। आपने कोई फिल्म देखी है अभी लेटेस्ट की, या मतलब पिछले कुछ 10-15 सालों में?
1: 10-15 सालों में तो देखी होंगी इतनी सारी पिक्चर।
0: 2018 की फिल्म है ये, आज से तकरीबन जो है 8 साल पुरानी फिल्म है ये। तो कभी नाम सुना आपने इस फिल्म का?
1: नाम सुना है।
0: कौन था हीरो उसमें पता आपको?
1: नहीं पता।
0: चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये दोस्तों से डायरेक्ट जवाब से बात है, जब किसी ने कुछ देखा ही नहीं तो उनसे क्या बात की जाए। तो बताना चाहूंगा ये फिल्म थी एक ऐसे आर्टिस्ट के ऊपर जिसे पूरी फिल्म के अंदर जो है देखने वालों को ये गैस करना होता है, या यूं को ऐसा प्रतीत होता है कि इस फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर जो आयुष्मान खुराना ने प्ले किया था, कि वो रियल लाइफ में अंधा है या अंधा होने का ड्रामा कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी और इतनी ज़बरदस्त फिल्म थी कि इस फिल्म ने जितने बनी थी उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाए। इस फिल्म का नाम अंधाधुन इसलिए रखा गया क्योंकि इस फिल्म के अंदर ब्लाइंड कैरेक्टर तो आयुष्मान खुराना ने प्ले किया, और वो इस फिल्म के अंदर पियानो प्ले करते हैं और पियानो पे प्ले होती है धुन, अंधा धुन, इस तरह से इस फिल्म का नाम रखा गया। तो ये वो नहीं कि बस बोल दिया और कर दिया और हो गया क्या है, आप अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसा मामला नहीं है जो है ये दाल भात खाकर, शायद पता नहीं उन्होंने ना लिखा, मुझे पूछना पड़ेगा, या यूं कहूँ कि दूध और भात खा के। लेकिन मेरे ख्याल से ये किस्सा जो है, मेरे ख्याल से कोई फिल्म भी ऐसी बननी चाहिए जिसके अंदर जो है भात और दूध का जो किस्सा बड़ा ही मतलब फैंटेसाइज आपने जो किया है और वाकई में मतलब इंटरेस्टिंग है। फिलहाल और आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत की थी पीयूष्मान जो है इन्होंने, इन्हें पीयूष्मान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो पियानो बजाया उसके अंदर जो उंगलियों का इस्तेमाल किया वो इन्होंने किसी डूब का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने 2 महीने तक लगातार क्लासेस ली पियानो बजाने की, आपको लग रहा होगा भात और चावल खाने की है, या भात और चावल देखी चीज होती है ना, भात और दूध खाने की। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, तो बताना चाहूंगा इस फिल्म के अंदर जो एक बड़ा ही खूबसूरत सा कैरेक्टर जो है तब्बू जी ने प्ले किया था और जिसे लेडी मैकबेथ के नाम से संबोधित किया गया, और बताया गया इस फिल्म के अंदर जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है वो काबिले तारीफ है, और वाकई में इस फिल्म के अंदर जो मर्डर मिस्ट्री है वो देखने लायक है। जब भी आपको वक्त मिले तो आप जो हैं आप ज़रूर देखिएगा। हाँ, जैसे इन्होंने बताया है कि ये हमेशा जो है जासूसी की फिल्में जो हैं वो पता नहीं देखी है नहीं देखी है इन्होंने, तो कभी भी अगर आपने
1: जैसे ज़रूर देखूंगी मैं,
0: ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि चप्पल चुराने वाला जो मामला आपका है वो बढ़िया इसमें फिट होगा। फिलहाल सुनते हैं अगले ट्रैक को जो होने वाला है हर मैदान फतेह वाला, और बात करेंगे और आपसे इसी तरह के कि ये फिल्म बड़ी खूबसूरत है और संजू बाबा की जो है बायोग्राफी उससे इंस्पायर है। Big

चलिए जी, हर मैदान आपने फतह कर लिया है, और मैदान फतह करते हुए नाला सुपारा से सीधा आ रही हैं चर्च गेट तक ट्रैवल करते हुए नाना दर्दन आरटी हमारी रिद्धि त्रिवेदी जी। तो रिद्धि जी, तो आप हमें बताइए श्री 420 के बारे में, या फिर आपने कोई फिल्म जो लास्ट देखी हो।

0: उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
1: नहीं, इतनी पुरानी फिल्में नहीं देखी है मैंने, बस अब कुछ दिनों पहले देखी थी, पर कमबख्त याद नहीं आ रही है कि कौन सी फिल्म देखी थी।
0: कौन सी? वो जो पिक्चर हॉल के अंदर वो जो गुटखा खाते हुए है वहाँ पर वो कहते हैं हमारी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई थी, हमने जब ऐसे खाया तंबाकू जीवन खराब हो गया था।
1: नहीं, उससे आगे भी देखा तो था पर
0: उसके बाद आपने तंबाकू खाना छोड़ दिया।
1: नहीं, अच्छा है कि वो आदत कभी लगी नहीं कि छोड़ने की नौबत आए।
0: क्या बात है, दाल भात ही आपका तंबाकू है?
1: हाँ हाँ, दाल भात और पीने के लिए पानी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बात की। कर मैदान, ये जो आपने गाना सुना, कभी सुना है इस गाने को आपने?
1: सुना है।
0: कौन सी फिल्म का गाना है ये?
1: ये नहीं पता।
0: बहुत बढ़िया, कौन है इस फिल्म के अंदर ये भी नहीं पता।
1: इतनी ज्यादा ईमानदारी आप मुझसे ना निकलवाए तो अच्छी बात है।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं भी इतना ज्यादा जानकार नहीं हूँ, पर सोचा जब अब गाना बज रहा है तो आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली जाए, है ना। तो भैया ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही बढ़िया फिल्म है, ये है संजू बाबा के ऊपर फिल्म बनी थी और इसमें रणबीर कपूर ने जो किरदार निभाया था काबिले तारीफ था, जिस तरह से उन्होंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, इस तरह से उन्होंने एक्टिंग करी वो जो थी इतनी ज़बरदस्त थी कि एक तरफ जो है जब एक जेल का सीन है, जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनके खुद के जो हैं पिताजी यानी कि लेजेंड ऋषि कपूर साहब, उन्होंने उन्हें देखा और पहचान ही नहीं पाया और उनकी एक वीडियो वायरल हो गई उस वक्त पे, उन्होंने इतनी तारीफ करी उसमें और उन्होंने बताया कि वो हकीकत में रणबीर को पहचान ही नहीं पाया कि वो संजू इतने हो बहू लग रहे हैं जिस तरह उन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब काबिले तारीफ है। करीब करीब उन्होंने अपना 25 किलो इसके लिए वजन बढ़ाया था और वहीं एक तरफ जब उनके यंग रोल का एक तरह से सीन था उसके अंदर उन्होंने काफ़ी वजन घटाना ही पड़ा। हर रोज़ सुबह उठकर 3 बजे तक वो जो है वर्कआउट करते थे, या यूँ कहूँ कि 3 बजे उठकर वर्कआउट करते थे क्योंकि दिन के अंदर फिल्म शूट करनी होती थी। आई होप इन्हें नाला सुपार से ट्रेन ना पकड़नी पड़ती हो। लेकिन अगला ट्रैक आपको मैं सुनाऊंगा, बड़ा बेहतरीन सा, आओ कभी हवेली पर गाने का नाम है, सुनिए इस गाने को। बहुत जल्द वापस मिलते हैं रिद्धि के साथ, बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर। यहाँ होता है लेस पकाना मोर बजाना, सुनते अगला गाना। आओ

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पीपल अंडर फ्लोर आ चुके हैं और अनीश आ चुके हैं, और ये जब फ्लोर पर आते हैं आपको पता है क्या होता है, सीधा दाल भात से इन्होंने भी बात शुरू करी है। तो हम इनकी जो है भात चावल और जो सारे किस्से हैं वो एक साथ करेंगे, क्योंकि जब ये आते हैं तो अंग्रेजी में ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाते हैं जहाँ मेरे ऐसे थ्री मस्केटर्स कहने वाले बंदे को भी शून्य होना पड़ता है। तो फिलहाल रिद्धि इस वक्त में टक टक देख रही है, चलिए उनकी ज़ुबान से सुनते हैं क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत से गाने के बारे में। आपका क्या होगा जनाब आली?
1: सही कहा है कि भाई आप दाल चावल खाओ, आप दूध भात खाओ, या फिर कोई ऐसी स्वादिष्ट डिश खाओ, आपका क्या होगा जनाबे आली? जो अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाए के तो उनका अच्छा ही होना है।
0: क्या बात है, इन्होंने वही वाली बात कर दी जो मैंने आपको बताई थी बिटकॉइन वाली बात, कि लोगों ने अरबों रुपए जो है उसका खाना खाया था, यानी कि दो पिज्जा खरीदे थे जब उन्हें पता नहीं था कि बिटकॉइन की कीमत इतनी होगी। तो फिलहाल समझने वाले समझ गए और ना समझे वो अपने नाला सुपारा वाले हैं जो हमारे सामने बैठे हैं समक्ष। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है सोना महापात्रा की आवाज़ में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट का जो है भात और दूध पिलाता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत सा सेंसेक का एड्स आपके समक्ष हाजिर है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: इस प्यार ने कर दिया दीवाना, और मैं दीवाने के चक्कर में भूल गया कि टाइम हो गया 7:54, अनीश सामने खड़े हुए और कह रहे हैं कि 8 बजे का मेरा शो है, भाई साहब कब दोगे मुझे जगह? और मैंने कहा कि भाई साहब मैं बिल्कुल निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 16 मिलियन फॉलोअर नहीं है, ना ही 18 मिलियन फॉलोअर है, क्योंकि भाई साहब ये तो आज की तारीख में CJP नाम की पार्टी को हो गया है, इसके बारे में अगली बार बात करेंगे, क्योंकि ये तो अब सेंसेशन बन गया। कहाँ एक तरफ लोग पता नहीं दिन साल लगा देते हैं फॉलोअर्स जोड़ने में, और इस बंदे ने भाई साहब चुटकियों के अंदर कहाँ से क्या बात कर दी है। फिलहाल ये बात भी जो है मैं कहूँगा बिल्कुल अलग है, और इस अलग बात को अलग शो में करेंगे। मैं लूंगा आपसे विदा। रिद्धि कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ अपने लिसनर्स को बताइए, आपको उन्होंने बहुत याद किया है आज।
1: नहीं, आज सच में खेत के साथ ये जो जुगलबंदी हुई है शब्दों की, फिर एक शब्द से हम दूसरी बातों पर गए, और इसी तरह हम बहुत सारे लोगों से जुड़ पाए, तो बहुत मज़ा आया आज का ये शो करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि जो ये शो सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स को भी बहुत बहुत आनंद आया होगा केत और मेरी बातें सुनकर।
0: क्या बात है, इन्होंने कम बोला, नहीं तो 8 बजे के बाद अंग्रेजी सो भी इसे मैं करना पड़ता हम लोगों को। चलिए इसी के साथ बाय बाय टाटा, ख्याल रखिए अपना, और अनीश आपको सुनाएंगे मस्ती में बेहतरीन गाने, और मैं लेता हूँ आपसे विदा, रिद्धि भी आपसे लेती है विदा। बहुत जल्द आपको सोलो शो में मिलेगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए शो के लिए FM रेनबो की पूरी टीम की तरफ से,
1: धन्यवाद,
0: और हमारे मुस्कुराते चेहरों की तरफ से, और आपके सभी लिसनर्स की तरफ से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने

0: लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला

जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिलों की बात करने, महफिलों की बात करने के लिए ही तो हमने सजाई है ये रंग की महफिल जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त। कहाँ, अगर याद नहीं है आपको तो मैं याद दिला देता हूँ, अजी आप सुन रहे हैं इसे यहाँ
1: FM Rainbow 102.6।
0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और इसे आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली NCR के आसपास के इलाकों में। और साथ ही हम आपको बता दें कि हमारा ये पता दिल्ली NCR में है फिक्स, यानी 102.6, लेकिन हम मिलते हैं आपको देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर। और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से तो आप हमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में किसी भी कोने में किसी भी वक्त सुन सकते हैं। तो जहाँ भी जैसे भी आप सुन रहे हैं, आपका रंग महफिल में इस्तकबाल। मेरा नाम विकास है और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपसे मोहब्बत है हमारी गहरी, खास, बहुत ही ज़बरदस्त वाली। और इसी मोहब्बत की वजह से, आपकी इस जस्तजू की वजह से आए हैं हम आपसे मिलने, रंग महफिल सजाने आपके साथ।

उम्र अफजान और आशा जी की आवाज़, दो ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी यादों में बसे रहेंगे और इनका मुकाबला कहीं नहीं, कभी भी नहीं, है ना। एक आपको बात बताएं कि बदला बदला सा मिजाज है, क्या बात हो गई। शिकायत हमसे है कि किसी और से मुलाकात हो गई। वैसे कहीं तो मुलाकातों में भी अक्सर ज़िंदगी के जाने भी रंग होते हैं, कभी कुछ मीठी बातें भी होती हैं तो कभी खुल जाता है शिकायतों का पिटारा भी। हमारे बहुत सारे दोस्त हमें शिकायतें भी दे रहे हैं मैसेजेस पर कि आप हमारे मैसेजेस नहीं लेते, लेकिन हम आपको बता दें कि हर प्रोग्राम का एक सलीका होता है। हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपके मैसेजेस को थोड़ा आराम दें, लेकिन हाँ, आपकी जो बातें हैं वो हम तक पहुँचती रहें तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। और ज़रूर थोड़ी कि आपकी सारी बातें मैं सबको बताऊँ, कुछ बातें मेरे लिए भी तो होती हैं, है ना। इसीलिए रंगे महफिल में एक रंग आपकी और मेरी दोस्ती का कुछ ऐसा भी है जो सबके लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए एक्सक्लूसिव है, है ना। तो फिलहाल मैं आपको एक बहुत बढ़िया हरिहरन साहब की गजल सुना रहा हूँ। लौट कर आएंगे तो करेंगे कुछ और खास बातें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी की रेनबो पर रंग महफिल। विकास है आज आपके साथ इस महफिल का एक रंग।

साथियों, आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं।

इस गजल में जगजीत साहब ने बात तो बड़े मार्के की कही है कि धूप में निकलो, घटाओं को हटा कर देखो, और जिंदगी क्या कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये किताबों को हटा कर देखो, है ना। लेकिन मुश्किल ये है कि आजकल के मौसम में अगर आप धूप में निकलेंगे ना तो हीट स्ट्रोक का खतरा है। बच कर रहिए, संभल कर रहिए और सर को ढक कर चलिए, है ना। और साथ में ज़रूर ज़रूर ज़रूर याद रखें कि आपको अपनी ठंडी पानी की बॉटल जो है वो कैरी करनी है, उसको लेकर चलना है और बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट करते हुए पानी पीते रहना है, है ना। चाहे इस महफिल से लेकर उस महफिल तक कहीं भी जाएं, कोशिश कीजिए कि दोपहर एक बजे से लेकर और तकरीबन चार बजे तक बच कर चलें, धूप में ना निकलें, संभल कर रहें, अपना भी ख्याल रखें और ख़ासकर छोटे बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें कि वो गर्मियों की छुट्टियों में धूप में खेलने ना निकलें, ठीक है। और बाकी भी अगर आप किसी की सड़क चलते हुए मदद कर सकते हैं, उन्हें कुछ पानी दे सकते हैं या कुछ भी आप उनका ख्याल रख सकते हैं किसी भी तरीके से, तो सोच कर देखिएगा। अगर अच्छा काम करते हैं तो दिल की बेकरारी बड़ी मिटती है, वरना इस दुनिया में तो बेकरारी ही बेकरारी है।

सचमुच यार, ये इश्क बड़ी बीमारी है और बेकरारी ही बेकरारी है। आपके साथ भी जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता होगा ना, जब लगता होगा कि यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, लेकिन बड़ा मीठा एहसास है इश्क। जैसे हमारे कई सारे मित्र हैं, उनको हमसे हो जाता है, जो हमसे हमें देखते नहीं, हमें बस सुनते हैं, लेकिन उनके एहसास हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और सचमुच स्क्रीन एकदम लबालब हो जाती है आपकी मोहब्बत से। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का और धन्यवाद देता हूँ उन्हें, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना प्यार हमसे करते हैं। और बड़ी प्यारी सी बात एक दोस्त ने लिखकर भेजी है, वो तो आपको सुनानी ज़रूर है, कहनी ज़रूर है। बात कुछ यूँ कहते हैं वो कि आवाज़ सुनकर ही आपकी, आवाज़ सुनकर ही आपकी हमारा दिल मुस्कुराया है। माना कि देखा नहीं आपको, न छुआ है न पाया है, पर आपके इंतज़ार में हमें इबादत सा सुकून आया है। सचमुच हम भी ये मानते हैं कि आपको भले हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, लेकिन हम महसूस करते हैं कि आपके कान हमारी बातों पर रहते हैं और हमारे एक एक शब्द से, हमारे एक एक अल्फाज से, हमारे एक एक गीत से, हमारे एक एक अंदाज से आप जुड़े रहते हैं। और हमारा एक ही मकसद है, हर हाल में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना, भले ही आप हमें दिखाई दिए हों या ना दिए हों।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव

0: 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

क्या बात है ये, मतलब जगजीत साहब का जादू है। बचपन में कब सुनी थी ये गजल, ये ऐसे दिमाग में असर कर गई है ना कि इसके साथ आप बहते चले जाते हैं ना, और ऐसा बहते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आपका बहुत वक्त कब चला गया। बड़ी लंबी है ये, तकरीबन 9 मिनट की है, लेकिन इसे सुनते रहिए, खो जाते हैं आप इसके भीतर, इसके जादू में खो जाते हैं। और देखिए, जादू में खोने का असर यह है कि वक्त के साथ बहते बहते बहते अब हम उस मुहाने पर आ गए हैं जब आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त बस अब यहीं तक था। यह इशारा घड़ी ने हमें

मोहब्बत आएंगे इस भरोसे के साथ। आई एम टेकिंग योर लीव और आपकी और मेरी मोहब्बत की जो बातें हैं ज़्यादा किसी को कहिएगा नहीं, क्योंकि अगर बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और हंसते गाते मुस्कुराते सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ

0: मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 12:05 और 40 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो, और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं धड़कन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाँ?
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों 2005 में एक फिल्म आई थी पेज 3, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे कोंकणा सेन शर्मा, अतुल कुलकर्णी और संध्या मृदुल। आइए अब सुनवाते हैं आपको उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों, सन 2003 में एक आइकॉनिक बॉलीवुड टीनेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था इश्क विश्क। इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे शाहिद कपूर और अमृता राव। और इस फिल्म के वैसे तो काफ़ी गीत हिट हुए थे, लेकिन एक गीत ऐसा भी था जो काफ़ी हिट हुआ था। तो आइए सुनते हैं वही प्यारा सा गीत जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू और अलीशा चिनॉय ने।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: जीरो आर शो में आइए, अब आपको सुनवाते हैं कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में फिल्म वेकअप सेठ का एक गीत।

ये गीत था वेकअप सेट से, और अब आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया का ये गीत।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वंश फिल्म में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम को।

0: 12:42 और 28 सेकेंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: लता मंगेशकर को लीजिए सुनिए वारिस फिल्म में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपट

के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण ने पणजी गोवा में उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 का आयोजन किया। इसमें समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: एक बजकर 5 मिनट और 46 सेकेंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात।

तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुना

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय

प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 2:05 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

साथियों, आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने रखें।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

शाम होगी यादगार आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आरा

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के वे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले

में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन

0: जन की सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जारी है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की पहली भारत यात्रा शुरू करेंगे। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वे कोलकाता में मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो के विक्टोरिया मेमोरियल जाने की भी संभावना है। रविवार को श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को वे आगरा और जयपुर की यात्रा करेंगे और फिर मंगलवार सुबह नई दिल्ली लौटेंगे, जहां वे भारत द्वारा आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसी बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं।

आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बताई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

होगी शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।